आकाशवाणी का ये शिवप्री केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संबत 1948 के बैसाख माघ की मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आइए सर्वप्रथम नमन करते हैं हम अपनी मातृभूमि को, सुनते हैं ये मातृवंदना।

अभी आप सुन रहे थे अक्षय उदक और साथियों के स्वर में ये मातृवंदना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, सुनते हैं ये भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे संत सूरदास की ये रचना आरती मुखर्जी की आवाज में। कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवप्रीत केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली रचना यश शर्मा और इस भक्ति गीत को आप सुनेंगे सीमा अनिल सहगल की आवाज में।

सीमा अनिल सहगल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की ये भक्ति रचना। कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं ब्रह्मदेव नारायण सिंह की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

0: ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है मीठी वाणी और चिंतक है गुलाब सिंह।
1: कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। बात बड़ी छोटी सी और उपदेशात्मक लगती है, लेकिन ये न तो छोटी है और न ही आदर्शात्मक, बल्कि ये जीवन की असलियत से इतनी जुड़ी है जितनी बहुत कम चीजें जुड़ी हैं। जीवन और जगत में सुख शांति की चाह रखने वाले संसार को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए ये बात अंतरराष्ट्रीय आण्विक संधि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कवि ने जो मीठी वाणी बोलने की बात कही है, इसके लिए सबसे जरूरी तत्व है मन का आपा खोना। ये मन का आपा क्या वस्तु है? क्या मन में दीनता, हीनता और लघुता का बोध उपजाना, अथवा अपने अस्तित्व का विलयन या विघटन करना, या अपनी अस्मिता की पहचान को समाप्त कर देना? संभवतः ऐसा नहीं है। आपा हमारे अहम या गर्व भावना का परिचायक है, जो दूसरों के सामने अपने को बड़ा, विशिष्ट या महत्वपूर्ण सिद्ध करने की चेतना से संबद्ध है। उल्लेखनीय ये है कि संसार में जितना अकांड तांडव हुआ है, उसके पीछे व्यक्ति का ये अहम ही प्रमुख कारण रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शांति पर बल देते हुए कहा गया है कि लड़ाई मनुष्य के मस्तिष्क से उपजती है। इसमें शक नहीं कि लड़ाई किसी भूमि या हथियार से शुरू होने के पहले मस्तिष्क से शुरू होती है। यही वो केंद्र बिंदु है जहां से लड़ाई का बीज भाव उत्पन्न होता है। इसलिए सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी सत्ता, संपत्ति, वैभव, बल, बुद्धि, विद्वत्ता, बड़प्पन आदि की अहम भावना का परिहार करके मन को संतुलित नहीं कर लेते, वाणी से मीठी बानी निकल ही नहीं सकती। सहज बानी बोलने के लिए हमारा सहज जीवन बोध बहुत जरूरी है। जो फरेबों में जीता है वो सहज कैसे हो सकता है, और बिना जीवन की सहजता के वाणी का सहज होना कठिन है। कविवर प्रसाद ने कहा है कि प्रकृति के हर काम में एक गति है, एक लय है। हम देखते हैं कि झरने के झरने से लेकर पक्षी के कलरव तक एक सम है, एक लय है, लेकिन मनुष्य है कि उसने अपने राग को बेसुरा बना लिया है। परिणाम ये होता है कि मानव समाज में आपसी मनमुटाव, कलह से लेकर युद्धों तक की स्थिति है। भाई भाई लड़ रहे हैं, एक ही धर्म के मानने वाले एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं, और मजा ये कि इसका प्रचार करते हुए अपने को गर्वोन्नत समझ रहे हैं। कारण क्या है? संभवतः आपा न खोने की बात। जब हम आपा नहीं खोते तो हमारी जबान कतरनी की तरह चलती है। जबान ऐसा घाव करती है जो कभी भरता नहीं। इतिहास या पुराकथाओं की दुनिया में जाएं तो पता चलेगा कि महाभारत की लड़ाई का एक कारण यह भी था कि द्रौपदी ने दुर्योधन पर यह कटाक्ष किया था कि अंधों के अंधे ही होते हैं। इस कथन ने विनाश की लीला को आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, पांडवों को जहां वनवास की त्रासद पीड़ा भोगनी पड़ी, वहीं महाभारत के भयानक विनाश तांडव को भी सहना पड़ा। खुद द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। इसलिए यदि हम अपने अहम को संबंधों के बीच में बाधक न बनने दें और उचित समय पर सार्थक बात सही शब्दों में कहें, तो निश्चित रूप से एक बेहतर सामाजिक उपकार कर सकते हैं। संभवतः इसी को लक्ष्य करके संस्कृत के नीतिकार ने कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो। तात्पर्य ये कि सत्य बोलना श्रेयस्कर है, लेकिन उससे भी श्रेयस्कर है प्रिय बोलना। प्रिय बोलने का अर्थ चाटुकारी या खुशामत करना नहीं है, बल्कि शब्दों के एक विशेष अनुक्रम से है जिसमें ध्वनि और बलाघात का सही उपयोग किया गया हो, क्योंकि विभिन्न ध्वनियों और बलाघात के परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी को कहते हैं कि बिना पद के कोई पदार्थ नहीं होता। पद से ही व्यक्ति की मानसिकता जुड़ी होती है। इसमें अहम का विसर्जन या घोल प्रस्तुत करके ही ऐसी बानी बोली जा सकती है जो दूसरों को सुख देती है और अपने को मानसिक शांति।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत मीठी वाणी विषय पर ये विचार, और इसमें चिंतक थे गुलाब सिंह और वाचन स्वर थे सुनील केशव देवधर के। आकाशवाणी का ये शुभ

सुंदर उपवन में रमण करते हुए भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ने श्री राम के सम्मुख सिर नवाया। भरत श्री राम से कुछ जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं, किंतु उन्हें संकोच हो रहा है। हनुमान उनके संकोच की बात बताकर उसे दूर कर देते हैं। भरत के मन में संत और असंत के लक्षण सुनने की जिज्ञासा है। श्री राम उनकी शंका का समाधान करते हैं। संतों और असंतों की करनी चंदन और कुल्हाड़ी के आचरण जैसी होती है। कुल्हाड़ी का काम है वृक्ष को काटना, किंतु चंदन उसके प्रहार सहकर भी उसे अपनी सुगंध देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर सुशोभित होता है, जबकि कुल्हाड़ी को आग में तपाकर घन से पीटा जाता है। संत विषय वासना में लिप्त नहीं होते, उन्हें दूसरों को दुखी देखकर दुख और सुखी देखकर सुख प्राप्त होता है। कोई उनका शत्रु नहीं होता, वे काम क्रोध लोभ और मोह रहित होते हैं। उनका चित्त अत्यंत कोमल होता है। वे सबको आदर और सम्मान देते हैं और स्वयं मान अपमान रहित होते हैं। इसीलिए वे मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसारण। गायक स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर और सुरेश बाटकर के। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामयिकी। आज सुनिए ग्रीष्मकालीन मूंग एवं ग्वार की फसल में सामयिक कार्य, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं श्री एसएस चौधरी।
1: भाइयों नमस्कार। इसमें आपने ग्रीष्मकालीन मूंग लगा रखी होगी और निश्चित तौर पर अच्छी ही फसल होना चाहिए, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ से शिकायत आई है कि हमारी खेत की मूंग में इल्ली आना शुरू हो गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने खलिहान में रखी फसलों को जल्दी गहाई कर लें, और गहाई करके एक दो दिन सुखा करके उनको भंडारण कर लें। उसके बाद अब रही बात आपकी मूंग की और ग्वार की, तो लगभग तापक्रम 42 के आसपास हो गया है, तो अब आपको हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता है। अब जहाँ तक निंदाई का सवाल है, तो निंदाई आप जो लाइनें हैं दो लाइनों के बीच में हो के द्वारा आप हो चलाकर निंदाई कर सकते हैं, या श्रमिक लगा करके आप निंदाई करा सकते हैं खुरपी के द्वारा। इस अवस्था में अब खरपतवार नाशी दवा डालना संभव नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यदि खरपतवार नाशी दवा डालेंगे तो हमारा जो फूल आने की अवस्था है और फलियां बनने की वो प्रभावित होंगी, इसलिए खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग नहीं कर सकते। जहाँ तक कीट नियंत्रण का सवाल है, जो छोटी इल्ली जो दिखाई दे रही है किसान भाइयों, वो पत्तियों का रस चूसती है, और यहाँ तक कि इल्ली के अलावा माहू है, सफ़ेद मक्खी है, जेसेड है, ये भी थोड़ी मात्रा में कीट दिखाई देते हैं। खरीफ की तुलना में ग्रीष्मकाल में बहुत कम, ना के बराबर कीड़े लगते हैं, लेकिन इल्ली की जानकारी प्राप्त हुई है। तो किसान भाइयों इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटान 25 EC दवा, अगर ये उपलब्ध ना हो पाए तो डाई मिथोएट 30 EC 800 मिलीलीटर दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो ये जो इल्लियां हैं उनका कंट्रोल हो जाएगा। एक फली बीटर और फली छेदक जो हमारी मूंग की फलियां बनती हैं उनमें इल्ली छेद करके फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो इस प्रकार की इल्लियों की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास नाम की दवा आती है, ट्राइजोफास 40 EC दवा, इसको क्या करना है, 900 ml दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग पर खड़ी फसल पर छिड़काव कर दें, और इस तरह से आपका जो किसी भी प्रकार की इल्लियां हैं उनकी रोकथाम हो जाएगी। हालांकि ग्रीष्मकाल में मूंग में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है, लेकिन यदि आपको लगे कि पीला मोजेक कहीं दिखाई दे रहा हो तो इसके लिए मिथाइल डेमेटान 25 EC दवा आती है, इसको 1 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन के अंतर से एक दो बार छिड़काव करने से ये सफेद मक्खी के द्वारा फैलती है, और अगर सफेद मक्खी नष्ट हो जाएगी तो पीला मोजेक भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और अगर आपको रोगी पौधे मिले ज्यादा तो उखाड़ करके आप जमीन में दबा सकते हैं, इस तरह से भी हम अपना पीला मोजेक से नियंत्रण कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्वार का सवाल है, कुछ किसान भाइयों ने ग्रीष्मकाल में भी कुछ किसान भाइयों ने ग्वार की फसल लगाई है, तो किसान भाइयों तापक्रम की बात मैंने बता दी कि लगभग 42 के आसपास हो गया, इसलिए पानी की आवश्यकता बढ़ गई है। ग्वार गहरी जड़ों वाली फसल है, इसलिए इसे हर हफ्ते पानी देना आवश्यक है, और इसको पानी की ग्रीष्मकाल में ज्यादा आवश्यकता होती है, और फूल आने पर तो पानी की आवश्यकता बहुत होती है, तो इसको सिंचाई का ध्यान रखें। खरपतवारों की जहाँ तक सवाल है, पौधे बड़े बड़े होने की अवस्था में हैं, अगर आप खेत में आसानी से चल सकते हैं तो हो के द्वारा ही आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, हालांकि छाया अगर ज्यादा हो गई हो तो खरपतवार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जहाँ तक कीट नियंत्रण का सवाल है, इसमें माहू और सफेद मक्खी और पत्ती छेदक कीट जो होते हैं ये बहुत प्रभावित करते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए 0.5% मेलाथियन 50 EC दवा या 0.07% इंडोसल्फान 35 EC का छिड़काव करें। अगर किसी प्रकार की जैसे बीमारी रहती है, पर्णांग वाली बीमारी से बचने के लिए पहले तो बीजों को हमको, यानी आप चाहें तो 100 ppm स्ट्रेप्टोमाइसिन से उपचारित करके बोना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि पत्तियों पर आ गया है तो ट्रेप्टोमाइक्लिन 150 ppm यानी 0.2% बिलीटॉक्स के मिश्रण का छिड़काव करें, तो इस तरह की जो चूर्णी आस्था वगैरह भी है वो भी खत्म हो जाएगी, और सिंचाई का

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामयिकी। आज का विषय था ग्रीष्मकालीन मूंग एवं ग्वार की फसल में सामयिक कार, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे श्री एसएस चौधरी। आकाशवाणी का ये शुभप्रिय केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको जानकारी देते हैं हमारे स्टूडियो से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः 6:55 पर यानी कुछ ही पहले बाद सुनिएगा संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से। 7:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सांप्रदायिक सद्भाव पर एक लघु वार्ता सुनिएगा हमारे स्टूडियो से प्रातः 7:05 पर। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा प्रातः 7:10 का, जिन्हें हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। हमारे स्टूडियो से सुनिएगा प्रातः 7:20 पर हिंदी वार्ता। विषय रहेगा हिंदी का विकास आदिकाल से आधुनिक काल तक, और इस विषय पर आपको जानकारी देंगी श्रीमती इंदु पारासर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 7:30 पर। सूचनापरक दैनिक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रोजाना की तरह प्रातः 7:45 पर। कार्यक्रम रहेगा नमस्कार शिवप्री। समाचार प्रभात सुनिएगा प्रातः 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। साथ ही सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 8:30 पर और 9:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग सुनिएगा प्रातः 9:00। आज के कलाकार होंगे राजीव कुमार रावत और सुधीर बाबू पांडे। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से होगा प्रातः 10:00। 10:05 पर सुनिएगा हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज सुनिएगा घनश्याम पासवानी की गाई हुई कुछ गजलें। फिल्म संगीत का आनंद पुनः लीजिएगा प्रातः 10:30 पर। कार्यक्रम रहेगा आपकी फरमाइश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से रिले होंगे 11:00 से। दोपहर 1:00 सुनिएगा कार्यक्रम महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति रहेगी भोपाल केंद्र की। संध्या की शुरुआत होगी कार्यक्रम युववाणी के साथ संध्या 5:00। योगदान रहेगा भोपाल केंद्र का। 5:55 से सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से जारी रहेंगे। संध्या 7:21 पर सुनिएगा हमारे स्टूडियो से कार्यक्रम चौपाल। आज के विषय रहेंगे कृषि क्षेत्र का क्रांतिकारी कदम, ड्रोन तकनीक, अक्षय ऊर्जा एक जानकारी, जल है तो कल है। साथ ही होगी एक भेंट वार्ता फसलों में मौसम पूर्वानुमान द्वारा कीट रोग नियंत्रण विषय पर। वार्ताकार होंगे श्री विजय प्रताप सिंह और इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। रात्रि 8:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे स्टूडियो से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का शुभ केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिएगा संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्यसर्वकारीयकर्मचारिणां कृते सप्तमवेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायकदलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिकरूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं गृहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं, समय हुआ है

कार्यक्रम लघु वार्ता का आज का विषय है सांप्रदायिक सद्भाव। श्रोताओं, इस देश की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक ऐसा जहर है जिसमें व्यक्ति केवल अपने धर्म, जाति और भाषा आदि की अच्छाइयों को गिनाता है और दूसरों के धर्म की लाख बुराइयां करता है। इससे देश में सांप्रदायिक झगड़ों को बल मिलता है, इसलिए देश के प्रेमी सांप्रदायिक ही भावना पर ज़्यादा बल देते हैं। उनकी हर कोशिश यही होती है कि देश में किसी तरह के झगड़े ना हों, सब धर्म, जाति, भाषा के लोग एक थाली में बैठकर भोजन करें, एक साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और जब भी देश पर बाहरी हमला हो तो सब अपने जातिगत, धर्मगत भेद मिटाकर दुश्मनों के आगे सीना तान कर खड़े हो जाएं। सच तो यह है कि आज सबसे बड़ा देश को खतरा भारत की एकता को है। इस एकता को दुश्मन सांप्रदायिक तनाव पैदा कर खत्म करने पर तुले हुए हैं। देश में सांप्रदायिक नाम पर ईर्ष्या फैलाई जाती है, दंगे भड़काए जाते हैं, तोड़फोड़ की घटनाएं की जाती हैं, बर्बरता और अमानवीय प्रवृत्तियां अपनाई जाती हैं जिसके कारण मानवीय संवेदनाएं चूर चूर हो जाती हैं। सांप्रदायिकता में मानव पशुवत व्यवहार करता है, शांति और सद्भावना की जगह रक्तपात के लिए उतारू हो जाता है, मानवीय मूल्यों को ताक पर रख देता है। ऐसे में देश का प्रभुत वर्ग समाज में सांप्रदायिक सद्भावना लेकर आता है और लोगों को समझा बुझाकर शांत करता है। असल में हम सांप्रदायिकता का सही अर्थ जानते ही नहीं हैं। जब तक हम राष्ट्र, धर्म और संप्रदाय का सही अर्थ नहीं जानेंगे तब तक सांप्रदायिक सद्भावना कायम नहीं हो सकती। असल में संप्रदाय एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति का नाम है। साधारणतः किसी व्यक्ति द्वारा चलाए गए पंथ को संप्रदाय कहते हैं, जैसे इस्लाम, बौद्ध, शाक्त, वैष्णव, शैव संप्रदाय आदि। इसके चलाने वाले कोई ना कोई महापुरुष ही होते हैं। कोई भी पंथ का संचालक कभी भी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता, ना ही दूसरे धर्म को मानने से मना करता है। लेकिन हमारे देश के कुछ स्वार्थी समाज के लोग इन विभिन्न पंथ के लोगों को एक दूसरे से लड़वा देते हैं, जिसके कारण इंसानियत का खून होता है। संप्रदाय पूजा पद्धति है जबकि धर्म एक नियम है। ये ऐसे नियम है जिनसे समाज संचालित होता है। संप्रदाय कोई धर्म नहीं है। संप्रदाय संकुचित विचारधारा है जबकि धर्म विशाल है। ऐसे में अगर हम देश में सांप्रदायिक एकता बनाए रखना चाहते हैं तो सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को उदार बनाना होगा। हमें विभिन्न संप्रदायों की पूजा पद्धतियों के प्रति आदर भाव दिखाना होगा, इन संप्रदायों की अच्छी बातों को अपनाना होगा, विचारों में मतभेद दूर करने होंगे, तब देश में सांप्रदायिक सद्भावना कायम होगी और इसी भावना से देश हमारा आगे उन्नति करेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जी हाँ, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में बनेंगे, सबसे पहले हम एक इंसान हैं। बस हमें यही ध्यान रखना है और इसी विचारधारा से हमें खुद को और अपने देश को आगे बढ़ाना है। श्रोताओं, ये तो थी लघु वार्ता जिसके अंतर्गत आज चर्चा का विषय था सांप्रदायिक सद्भाव। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है, कुछ ही पलों में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व में करेंगे कुंभाभिषेक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो में दो मादा चीते किए आजाद। गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट इकाई की रखी गई नींव। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने कहा, अब प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे युवा। और प्रदेश में टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में भाग लेंगे। वे भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभाभिषेक करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में एक रोड शो भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइबराबाद देश और दुनिया दोनों के लिए अहम है और तेलंगाना को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जहीराबाद में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। श्री मोदी ने देश हित में लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने और पेट्रोल डीजल का उपयोग संयम के साथ करने की अपील भी की।
1: भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीती थीं, जिनमें अकेले भाजपा को 82 सीटें मिली। राज्यपाल कल श्री सरमा और उनकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को क्वारंटीन बाड़े से खुले जंगल में छोड़ेंगे। ये दोनों चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से हैं, जिन्होंने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। इस कदम से प्रोजेक्ट चीता को नई रफ्तार मिलेगी और अब भारत में कुल चीतों की संख्या 57 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गुना में अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। 32 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाली इस फैक्ट्री से 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सालाना 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है।
0: श्री सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने की कोशिशें तेज हैं, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। शिवपुरी विकासखंड के ग्राम धुवानी की इंदिरा जाटव भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है, जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर अपनी जिंदगी बदल ली है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता।
4: इंदिरा जाटम ने वर्ष 2016 में समूह गठन की प्रक्रिया से जुड़कर बांकड़े बाबा स्व सहायता समूह का गठन किया और समूह की अध्यक्ष बनी। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने स्कूल गढ़वे सिलाई के माध्यम से आय अर्जित की। महिला इंदिरा जाटम ने बताया कि वे पहले मजदूरी और कृषि कार्य करती थी, लेकिन अब समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन गई है।
5: महिला समूह से नहीं जुड़ी थी तो मेरी कोई आमदनी न थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई के प्रति

0: ऋण प्राप्त करने से मेरी आय बढ़ गई है।
1: मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के DPM डॉक्टर अरविंद भार्गव ने बताया कि
2: जो हमारे समूह से महिलाएं जुड़ी हैं, उनको आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीपी जिले में इंदिरा जाटो किया है और वो 12,500-13,000 रुपए प्रति माह कमा रही है। और जो प्रधानमंत्री का सपना था कि लखपति दीदी बने, तो वो लखपति दीदी की श्रेणी में भी आ चुकी है।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता।
3: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के कार्यक्रम में प्रदेश को 830 करोड़ रुपए का आवंटन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है और कोई भी गांव पक्की सड़क से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,055 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश की पहचान है और आत्मनिर्भर MP के लिए खादी और ग्रामोद्योग सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुनकर मुद्रा योजना के तहत पिछले 3 साल में 194 बुनकरों को 268 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भोपाल के 27 स्कूलों कॉलेजों के 250 से ज्यादा छात्र शिक्षक भाग लेंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ स्वदेशी तकनीक और विज्ञान की अहमियत पर बच्चों से रूबरू होंगे। इसके साथ ही एक रोबोटिक्स वर्कशॉप भी होगी, जिसमें बच्चे खुद टीमें बनाकर रोबोटिक्स मॉडल तैयार करेंगे। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को आंधी तूफान की वजह से MP टूरिज्म का क्रूज डूब गया था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। अब सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया है। ये आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और यह भी बताएगा कि हादसे के वक्त बचाव का काम ठीक से हुआ या नहीं। साथ ही प्रदेश में चलने वाली सभी नावों और क्रूज के लिए नए सेफ्टी नियम भी तय किए जाएंगे। बात मौसम की। प्रदेश में 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से आज मंडला, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 8 जिलों में 30 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम समेत कई जिलों में तेज गर्मी रहेगी। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में यह मिलाजुला मौसम अभी कुछ दिन और बना रहेगा। अब बात खेल की। प्रदेश की शूटर नीरू दंडा ने कजाकिस्तान के अल्माटी में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में विवान कपूर के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता है। नीरू राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने नीरू को बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल है। रायपुर में कल रात खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए, जिसमें तिलक वर्मा ने 42 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली। बेंगलुरु ने 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया और भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। वहीं आज धर्मशाला में 7:30 बजे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के गौरीघाट पर 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संपन्न। होमगार्ड और SDRF के जवानों ने किया अभ्यास। बैतूल के नंदावन धन विकास केंद्र में आज न्यूजीलैंड का प्रतिनिधि मंडल करेगा भ्रमण। मधु संग्रहण और जनजातीय आजीविका गतिविधियों का लेगा जायजा। रतलाम टिकट चेकिंग टीम ने 3,41,00,000 रुपए का राजस्व अर्जित कर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में बनाया नया रिकॉर्ड। बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम का 2रा चरण पूरा। 4 जंगली भैंसे विशेष बाड़े में किए गए मुक्त। डिंडोरी में आरोह ग्रीष्मकालीन कैंप के तहत मां नर्मदा तट पर विशेष संडे एक्टिविटी का आयोजन हुआ। और पन्ना जिला चिकित्सालय में 4 से 10 मई तक चले अग्नि सुरक्षा सप्ताह में मरीजों, परिजनों और अस्पताल स्टाफ को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी वार्ता। आज का विषय है हिंदी का विकास आदिकाल से आधुनिक काल तक, और वार्ताकार हैं श्रीमती इंदु पारसर।
1: हिंदी का विकास आदिकाल से आधुनिक काल तक। हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और समृद्ध रहा है। हिंदी साहित्य के लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विशेष योगदान रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन की दृष्टि से निम्न चार कालों में विभक्त किया गया है। आदिकाल यानी वीर गाथा काल, जिसका संबंध 1050 से 1375 तक रहा। मध्यकाल, मध्यकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, संबत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीति काल, 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल संबत 1900 से अब तक। आदिकाल वीर गाथा काल विक्रम संबत 1050 से 1375 तक हिंदी साहित्य में युद्धनाद, शास्त्रों की झनकार एवं कोलाहल विद्यमान रहा। इस काल में लिखे गए ग्रंथों में अधिकांश वीर गाथाएं हैं, अतः इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। वीर गाथाएं मुक्तक एवं प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गईं। कवि प्राय राज्य आश्रित रहते थे तथा अपने राजाओं की प्रशंसा गा गा कर करते थे। इस काल में वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रही। इस काल के कवि चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, दलपति विजय तथा जगनिक आदि प्रमुख थे। मध्यकाल दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, तथा उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संबत 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल कहा गया। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। हिंदू मुस्लिम के मध्य विद्वेष की भावनाओं को इस तरह एकता के सूत्र में बांधकर जनता में भक्ति का प्रचार किया गया। धर्म के मस्तिष्क पर से हटकर हृदय ने आश्रय लिया, इसलिए इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्ति काल की समय सीमा में दो काव्य धाराएं थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा, इस धारा में योग साधना और ब्रह्म ज्ञान को अपनी कृतियों में प्रधानता दी। इस काल के कवियों ने आडंबर का विरोध कर मन की पवित्रता पर बल दिया। सगुण धारा, भक्ति काल में ही सगुण भक्ति का प्रतिपादन हुआ। आचार्य रामचरितमानस इस काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उत्तर काल यानी रीति काल, रीति काल का समय 1700 से संबत 1900 तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की काव्यगत रीतिबद्धता की मूल प्रवृत्ति के कारण इसे रीति काल कहा गया। इस काल के कवि अपनी कविताओं में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुमुखी रूप से वर्णित करते थे। इस काल में श्रृंगारिक कविताएं लिखी गईं, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी कविता का प्रारंभ हिंदी संबत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। आधुनिक विकास के क्रम को निम्न भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग, द्वेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी योग, प्रयोगवादी योग और नई कविता। भारतेंदु योग हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव स्वरूप इस काल में भक्ति, प्रेम और रहस्यवाद से संबंधित रचनाएं लिखी गईं। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे महान कवि हुए थे। रीतिकाल लगभग 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। इस काल में श्रृंगार, सौंदर्य और राज दरबारों से संबंधित रचनाएं लिखी गईं। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएं विकसित हुईं, जिसमें केशवदास, बिहारी, घनानंद जैसे कवि हुए। अब आता है आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक। यह काल हिंदी गद और पद्य के विकास का काल है, जिसमें भारतेंदु योग, द्वैधी योग, छायावादी योग, प्रगतिवादी योग, प्रयोगवादी योग और नई कविताएं जैसे विभिन्न साहित्यिक दौर आए। इसमें खड़ी बोली गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का गद्य है। सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक परेशानियों को प्रमुखता से उकेरा गया है। भारत में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना के अनुकरण का गहरा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। इसमें हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का विकास किया गया। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इस काल का कवि समकालीन परिस्थितियों का मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करने में अनूठी सफलता प्राप्त कर चुका। बहुत दिन बीते राम प्रभु खोयो अपनो देश, खोवत है अब बैठ के भाषा भोजन भेष। सामाजिक चेतना के स्वर में ऐसे ही विचार हमें प्रताप नारायण मिश्र के काव्य में मिलते हैं, जो वर्ण व्यवस्था और सामाजिक बुराइयों का खुलकर विरोध करते हैं। निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव को पहचाने, स्त्री गण को विद्या देवे, करे पतिव्रता यज्ञ लेवे। यत्र तत्र राम और कृष्ण पर आधारित रचनाएं मिलती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निर्गुण भक्ति का अनुराग प्रस्तुत किया है। सांझ सवेरे पंछी सब क्या करते हैं, कुछ तो हो रहा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। मैं नहीं संदेश स्वर्ग का लाया, भूतल को स्वर्ग बनाने आया। अब द्वैधी योग इसमें हमें देशभक्ति का स्वर उत्तरोत्तर विकास होता गया। भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उद्बुद्ध और प्रेरित करने वाला क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। कवि शंकर का बलिदान गान शीर्षक कविता की पंक्तियां दृष्टव्य हैं। देशभक्त वीरो, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अब यदि हम आदिकाल के कवियों के विषय में चर्चा करें तो आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। यह काल हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसमें विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ और हिंदी साहित्य का विकास भी हुआ, हिंदी भाषा का भी विकास हुआ। अब यदि हम आदिकाल से आधुनिक काल की विशेषताओं के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि जिसमें धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर रचनाएं हैं, जैसे रासोकाव्य। रासोकाव्य वीरगाथात्मक साहित्य का एक महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें वीरता, प्रेम और युद्धों का वर्णन है। इसके प्रमुख उदाहरण पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और परमार रासो है। इसके अतिरिक्त इस काल में कुछ अन्य प्रकार की रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे कि विद्यापति की पदावली। आदिकाल में युद्धों के वर्णन के बाद भक्ति काल में भक्त कवियों ने जाति व्यवस्था, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और सामाजिक समानता पर जोर दिया, जिसके अंतर्गत भक्ति और प्रेम, सामाजिक समानता, गुरु महिमा, काव्य शैलियों का प्रयोग, लोक कल्याण, साकार और निराकार, ब्रह्म की उपासना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ है। आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया गया है। अतः हिंदी साहित्य में अनेक साहित्यकार हैं जिनका स्थान अद्वितीय है। जिस प्रकार से आकाश में असंख्य तारे हैं किंतु चंद्रमा को ही अधिक महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में अनेक कवि हैं किंतु हिंदी पद्य साहित्य में कतिपय कवियों का स्थान ही सर्वोपरि है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी वार्ता, विषय था हिंदी का विकास आदिकाल से आधुनिक काल तक, और वार्ताकार थी श्रीमती इंदु पारसर। आकाशवाणी का ये शुभप्रिय केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म 1947 अर्थ फिल्म से लिया गया। आवाज़ें थीं सुजाता मोहन, अनुराधा श्रीराम की, और गीत जावेद अख्तर का था और संगीत एआर रहमान का। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है, लीजिए अब सुनिए फिल्म अनमोल मोती से लिया गया ये गीत, आशा भोसले और साथियों की आवाज़।

आशा भोसले और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे फिल्म अनमोल मोती से लिया गया ये गीत। गीत राजेंद्र कृष्ण का था और संगीत रवि का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आनंद।

आनंद फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी ही संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस अंक के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो सखी ज्योति तोमर। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक सुविचार के साथ। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। जी हाँ, जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उनको हंसते मुस्कुराते हुए उनसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी हार मानकर हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में आगे कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि हर रात एक नई सुबह लेकर आती है। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज दुख है तो कल सुख ज़रूर होगा, और हमें अपने हर दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करनी है, एक नई मुस्कुराहट के साथ करनी है। तो आप भी अपने खान पान का और अपने आप का ध्यान रखिए और ज़िंदगी को मुस्कुराते हुए, ज़िंदगी की कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ती जाइए। श्रोताओं, आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो देश की तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह दिन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 1998 में भारत द्वारा किया गया सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसने भारत को परमाणु सक्षम देश बना दिया था। श्रोताओं, देश को ताकतवर बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी टेक्नोलॉजी का भी बहुत महत्व है। 11 मई को यानी कि आज भारत में टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इतिहास में यह तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इसी दिन भारत ने 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। इसलिए 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश की तकनीकी क्रांति के लिए याद किया जाता है। दरअसल 11 मई को राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रृंखला में भारत ने दूसरी बार सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था और इसे ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 कहा जाता है। इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। दो दिन बाद देश में दो और परमाणु हथियारों का परीक्षण हुआ। इस परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति है। बस उसी वजह से 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कई और अहम तकनीकी क्रांति भी इसी दिन संभव हुई हैं। इन कारणों से भी आज के दिन को अहम। भारत के विश्व विमान हंस ने 1998 में इसी दिन उड़ान भरी थी। हंस 3 को नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी ने बनाया था। वह 2 सीटों वाला हल्का विमान था। इसका इस्तेमाल पायलटों को प्रशिक्षण देने, हवाई फोटोग्राफी निगरानी और पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए होता है। 11 मई 1998 को ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने त्रिशूल मिसाइल का आखिरी परीक्षण किया था। उसी दिन मिसाइल को भारतीय वायुसेना और भारतीय थलसेना में शामिल किया गया था। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल हैं या छोटी दूरी की मिसाइल हैं। श्रोताओं, ऐसे ही हमारा देश उन्नति करता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ का भी विशेष अवसर है, जो हम सब देश
वासियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित विषय है। यह दिन हमारे देश की सांस्कृतिक गरिमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सभी देशवासियों को आज के दिन की विशेष शुभकामनाएं। आज के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी है और सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ भी है। तो ये दोनों ही विषय हमारे लिए खास हैं। इन दोनों दिवसों की हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी को। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी। आइए कुछ समाचार पत्रों से जुड़ी हम आपको कुछ खबरें आपको बताते हैं। आज इन क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। बिजली कंपनी का मेंटेनेंस होने के कारण लोगों को बिजली गुल होने की समस्या उठानी पड़ सकती है, क्योंकि 11 केवी न्यू बस स्टैंड फीडर पर मेंटेनेंस का कार्य किए जाने के कारण 11 मई को यानी कि आज उक्त फीडर से जुड़े समस्त क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। उक्त 11 केवी न्यू बस स्टैंड फीडर के बंद रहने से प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक श्रीराम कॉलोनी, पौहरी चौराहा, गायत्री कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, सिटी सेंटर, एसपी कोठी के पीछे इत्यादि क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। मछली पालन क्षेत्र में केज स्थापना के लिए मांगे आवेदन। जिला पंचायत एवं निकाय के चयनित जलाशयों में मछली पालन को आधुनिक बनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सहायता संचालक मत्स्योद्योग जिला सिउपरी ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत निवेशकों और उद्यमियों को केज एक्वा कल्चर, एक्वापोनिक, इको टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासन द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए फिश हैचरी, कोल्ड स्टोरेज और फिश प्रोसेसिंग यूनिट जैसे बुनियादी ढांचे के विकास हेतु बैंक ऋण, ब्याज में छूट और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। इच्छुक उद्यमी अपनी विस्तृत कार्ययोजना, DPR एवं अन्य समस्त वांछित दस्तावेजों सहित 20 मई 2026 तक संबंधित जिला मत्स्योद्योग कार्यालय, क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। शिवपुरी जिला प्रशासन ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार उन क्षेत्रों में PNG कनेक्शन अनिवार्य कर दिया है जहां पाइपलाइन बिछ चुकी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा और जिला आपूर्ति लोगों को जागरूक करते हुए अधिकारी ने इसके लिए थिक गैस कंपनी को अधिकृत किया गया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस की किल्लत को दूर करना और पाइपलाइन जैसे जरिए सुरक्षित ईंधन की पहुंच सुनिश्चित करना है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन उपभोक्ताओं के घर में पाइपलाइन उपलब्ध है उन्हें अगले 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से कनेक्शन लेना होगा। यदि इस समय सीमा में PNG नहीं लगवाया जाता तो संबंधित गैस एजेंसी को वर्तमान PNG कनेक्शन काटने के निर्देश दिए जाएंगे हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलने में समस्या होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 23 मई 2026 तक जारी रहेगा। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सभी समिति प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी के बाद किसी भी किसान की स्वीकृति लंबित न रखी जाए ताकि किसानों को उसकी उपज का भुगतान समय पर मिल सके। जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार जिले में 49% खरीदी केंद्रों पर उपार्जन और स्लॉट बुकिंग का कार्य लगातार जारी है। यदि किसानों को स्लॉट बुकिंग या तौल पर्ची में जुड़ी कोई तकनीकी समस्या आती है तो वे जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, दिन में हल्के बादल छाए रहेंगे जिसकी वजह से अधिकतर
पारे में 2.1 डिग्री की गिरावट आई है। हालांकि न्यूनतम पारे में मामूली उछाल आया है। शहर का रविवार को अधिकतम पारा 37.2 डिग्री व न्यूनतम 25.4 डिग्री रहा, जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री और न्यूनतम 24.9 डिग्री रहा। अधिकतम पारे में 2.1 डिग्री गिरावट आई है, जबकि न्यूनतम पारा 0.4 डिग्री ऊपर रहा है। आज दिनभर धूप खिली रहेगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी। श्रोताओं, ये तो थी मौसम की जानकारी। एक और खबर हमारे पास है, बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान अब उनके घर के नज़दीक ही होगा। बिजली कंपनी 14 मई से पूरे कार्य क्षेत्र में संपर्क अभियान 2026 शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत हर वितरण केंद्र पर साल भर में 8 शिविर लगाए जाएंगे। यहां उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर वोल्टेज एवं नए कनेक्शन भुगतान संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण होगा। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि अभियान के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में त्रुटिपूर्ण बिजली बिल, गलत मीटर रीडिंग, अन्य बिलिंग शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाएगा। ग्रामीण, घरेलू और कृषि पंप उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपये में नए कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा भार वृद्धि, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, स्थायी कनेक्शन, विच्छेदन, अस्थायी कनेक्शन, EKYC, NOC जैसी सेवाओं के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। कंपनी के अनुसार बंद व खराब मीटर बदलने, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों, सर्विस केवल सुधार, वोल्टेज समस्या, ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों पर भी कार्रवाई होगी। श्रोताओं, आज का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार से हमें दीजिए अनुमति। कल पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में सुनिए समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: अपनाने की अपील।
1: विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
7: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष में एसबी त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
8: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा।

0: 0112371717 और 0112371716 व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

गीत आनंद बख्शी का था, संगीत राहुल देव वर्मन का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी वंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा बबीता शोभा रेखा रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी परी ललिता खर्चे गणेश कार्तिक नारायण भाऊ खर्चे और उनके साथियों ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था इंदिरा बिहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां डब्ल्यू नूरजहां सईद नूरजहां वसीम नूरजहां और वली उल्लाह नूरजहां ने। आशा है आपने अपनी पसंद का ये गीत ज़रूर सुना होगा। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मदहोश। गीत राजा मेहंदी अली खां का था और संगीत मदन मोहन का। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिवा तिवारी, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म मैंने प्यार किया से।

एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मैंने प्यार किया से। गीत असद भोपाली का था, संगीत राम लक्ष्मण का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी औरंगाबाद से राजेश साविल पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था आदर्श नगर मलूट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, शायनी शर्मा और निवान शर्मा ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिएगा इस छोटे से अंतराल के पश्चात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमें आई है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म माशूक का ये

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म माशूक से। गीत इंदिवर का है और संगीत श्याम सुंदर का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

आनंद राज आनंद की गाए हुए फिल्म मस्ती के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। इस गीत की फरमाइश हमें की थी दंतरेही से भागवत वर्मा, लेवी से गुलाबदास मानिकपुरी, रिमनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी ने। कार्यक्रम के इस फरमाइशी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनिए राजीव कुमार रावत और सुधीर बाबू पांडे के गाए हुए कुछ चुनिंदा लोकगीत।

कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजीव कुमार रावत के गाए हुए ये लोकगीत। कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनिएगा इस छोटे से अंतराल के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

अभी आप सुन रहे हैं राजीव कुमार रावत का गाया हुआ ये विदाई गीत। कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं ये

अभी आप सुन रहे थे राजीव कुमार रावत और साथियों का गाया हुआ ये मल्हार गीत। कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं सुधीर बाबू पांडे के गाए हुए कुछ लोकगीत।

सुधीर बाबू पांडे की गाई इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पुनः आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे के इस गीत के साथ, जिसे गाया है चित्रा और साथियों ने। गीत महबूब का है और संगीत ए आर रहमान।

चित्रा और साथियों के गाए फिल्म बॉम्बे को इस गीत में आप सुन रहे थे। गीत महबूब का था और संगीत AR रहमान का। इस गीत की फरमाइश की थी कोलारस से आरती पूजा।

अच्छा कान्हा, शिवम और उनके मम्मी पापा ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था फिजिकल रोड शिवपुरी से प्रज्ञा, प्रथा, प्रगति और उनके मम्मी पापा ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं फिल्म बॉर्डर से ये गीत।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म बॉर्डर से। गीत जावेद अख्तर का था, संगीत अनु मलिक का। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी गांव बिलोकला शिवपुरी से जश्नदीप कौर, मनदीप परदीप, मलकीत सिंह और सतिंदरजीत कौर ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहता गांव बांसखेड़ी जिला शिवपुरी से सिमरन विर्क, हरदीप, गुरनाम सिंह, प्रभजोत और मनरीत ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म दाग द फायर से।

डार्क द फायर, इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल और साथियों की आवाज़ में। गीत समीर का था, संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी फतेहपुर रोड शिवपुरी से रियल ओझा, अरविंद ओझा, प्रीति, संदीप और देवेंद्र ओझा ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था पौरी चौरा शिवपुरी से राजेंद्र सिंह तोमर, शरद शर्मा, संतोष गोस्वामी, शेखर सोनी, सोनू बंटू, सतीश, अनिल और उनके साथियों ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश, फिल्म वीर ज़ारा से।

0: वीर ज़ारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत जावेद अख्तर का था, संगीत मदन मोहन का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी फतेहपुर रोड शिवपुरी से शिवांगी तोमर, हर्षिता मिश्रा, पलक वैश्य, बिपनदीप गिल, दीपाली तृप्ति, नंदिनी, रितु, इंदिरा, मनीषा, संदीप, अंजना, सोनल और उनकी सखियों ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था पुरानी शिवपुरी से उवेरादिल जायदा बेगम और जोया खान ने। कार्यक्रम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप भी अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र शिवपुरी, पिन कोड 473551 पर। तो जिन श्रोताओं ने हमें अपनी फरमाइश
1: शर्मा का वाचन स्वर धारणा सचदेव। सबसे पहले बात विदिशा नेशनल लोक अदालत की। जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों में 34 खंडपीठों का गठन कर आपराधिक, सिविल, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक और राजस्व से जुड़े कुल 1716 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश शेख सलीम ने बताया कि इन मामलों में करीब 5,99,00,000 रुपए की सेटलमेंट राशि तय की गई है। अदालत के साथ न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने विदिशा जिले के खामखेड़ा कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत चल रही नल जल योजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि 46 लाख रुपए से अधिक की लागत से रेट्रोफिटिंग योजना के तहत नया नलकूप, संपवेल और करीब 5,000 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे अब गाँव के सभी घरों तक नल कनेक्शन पहुँचा दिए गए हैं। अब बात मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में नई सोनोग्राफी सेवा शुरू की गई है। इससे अब क्षेत्र के मरीजों को जाँच के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। खामखेड़ा आंगनवाड़ी सेक्टर केंद्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 31 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को FTK किट से पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया। इसी कड़ी में शासकीय ITI विदिशा में जिला होमगार्ड विभाग ने आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की। प्राचार्य कविता रघुवंशी ने बताया कि छात्रों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में नई पहलें देखने को मिल रही हैं। पीएम श्री योजना के तहत डाइट विदिशा में कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों के लिए विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 चरणों में चले इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग की जानकारी दी गई। वहीं चलो घाट की ओर अभियान के तहत बेतवा नदी संरक्षण के लिए साप्ताहिक श्रमदान शुरू किया गया है। जन अभियान परिषद के सहयोग से चल रहे इस अभियान में युवा और सामाजिक संस्थाएं नदी घाटों से जलकुंभी, प्लास्टिक और अन्य कचरा हटा रहे हैं। विदिशा जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वगणना अभियान की सराहना की। गोड़खेड़ी गांव में 100% स्वगणना कराने वाले शिक्षक केजी राजपूत समेत अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कृषि क्षेत्र में विदिशा जिले के किसान नई पहचान बना रहे हैं। पारंपरिक गेहूं चना की खेती छोड़ अब कई किसान ड्रैगन फ्रूट, चिया सीड और कलौंजी जैसी औषधीय फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रगतिशील किसान यशवंत तिवारी ने बताया कि चिया सीड की खेती से किसानों को प्रति बीघा 70,000 से 1,00,000 रुपए तक की शुद्ध आमदनी हो रही है। वहीं सिरसी गांव के किसान विपुल श्रीवास्तव ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बेहतर काम करने पर विदिशा जिले को बड़ी उपलब्धि मिली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निदेशक सुमित मिश्रा ने विदिशा को देश के टॉप 5 जिलों में शामिल होने पर जिला प्रशासन की सराहना की है। खासतौर पर स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार अपडेट अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग और DEGS टीम की प्रशंसा की गई। अब बात विदिशा जिले से मिली हुई कुछ प्रेरणादायक खबरों की। ITI से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पढ़ाई करने वाले अनिकेत मैना आज MPEB में प्लांट ऑपरेटर बनकर 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। वहीं केमिकल इंजीनियर चिराग गौर ने ITI से मैकेनिक डीजल ट्रेड का प्रशिक्षण लेकर बुद्धनी प्लांट में अप्रेंटिसशिप हासिल की। PM विश्वकर्मा योजना से 1,00,000 रुपए का कर्ज लेकर भारत सिंह ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोली है। वहीं वन स्टॉप सेंटर ने गलत ट्रेन में चढ़ जाने से विदिशा पहुंची 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के बाद बिहार के मधुबनी में उनके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाया। इसके अलावा RBS के योजना के तहत नटेरन की 10 वर्षीय खुशी का आयुष्मान कार्ड से भोपाल के चिरायु अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग का सफल निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। विदिशा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा का था, वाचन था धारणा सचदेव का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाश
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 10:05 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज सुनिए घनश्याम वासवानी की गाई हुई कुछ गजलें।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी की गाई हुई चंद गजलें। कार्यक्रम की अगली गजल सुनिएगा इस छोटे से अंतराल के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

अभी आप सुन रहे थे घनश्याम वासवानी की गाई हुई चंद गजलें। कार्यक्रम की इस अंतिम गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म।

कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर हम आपके पास हाजिर हैं, आपके पसंदीदा गीत लेकर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म आपके हैं कौन के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। गीत देव कोहली का है और संगीत राम लक्ष्मण का। आइए सुनते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन से लिया गया ये गीत।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म मैंने प्यार किया, माफ कीजिएगा फिल्म हम आपके हैं कौन से। गीत देव कोहली का था, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म हम साथ साथ हैं से लिया।

0: हम साथ साथ हैं, इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं हरिहरन, घनश्याम बासवानी, प्रतिमा राव और संतोष तिवारी की। गीत रविंद्र रावल का था, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जतिन की आवाज में गीत सुल्तान मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत जतिन ललित का। आइए अब सुनते हैं फिल्म कसूर का ये गीत।

अलका याग्निक की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कसूर से। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लावारिस से।

किशोर कुमार और आशा भोसले की गाय फिल्म लावारिस के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से।

कॉकटेल फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ें थी नीरज श्रीधर और कविता सेठ की, गीतकार थे इरशाद कामिल और तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप

चांदनी फिल्म का नगमा आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, शिव हरी की तर्ज़।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं।

0: will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026. And Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture, and our deep faith. As we mentioned, that Somnath is among the most important, the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
1: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है, इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं, वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं, सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है, वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है, उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण
2: जी,
1: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं, या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से, उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
2: जी।
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह

0: स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला, हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे, वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
2: Yes, you are absolutely absolutely right, Neelam, and as you mentioned, that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. Manaha Shiva Sankalpa Mastu Shumukasya Ekadanta.

विष्णुरा विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैक।

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु।

0: विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक, एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल

0: विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं। ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं। इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है। इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे। इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna, Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best

0: This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: नीलम, द टाइम फॉर द सूर्य किरण, द एरोबैटिक टीम, द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed! And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के, पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहाँ हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियाँ बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहाँ उपस्थित जन जो हैं वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं, और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, you are absolutely right. And incidentally, Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream, but taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade, and as you mentioned that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं, इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएँ वहाँ रहें, पेयजल की सुविधा रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो

0: दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को इंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियाँ ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज़्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं, अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है, उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. It marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 kilometer road show up to Hamirji Gohil Circle. Mr. Modi greeted the huge crowd gathered during the show. Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also accompanied him during the roadshow. While proceeding to the Somnath Temple, the Prime Minister was led by rhythmic beats of the Damru and greeted by devotees. The Prime Minister paid floral tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at his statue. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad yesterday, the Prime Minister made 7 appeals to the nation. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through the use of public transport and carpooling. The Prime Minister's appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to the West Asia crisis, and the deadlock in the Strait of Hormuz still persists. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month.
3: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
2: In Himachal Pradesh, 6 tourists lost their lives after their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district amid heavy rain and strong winds. 4 others were seriously injured. After receiving primary treatment, the injured were referred to Dr. Rajendra Prasad Government Medical College. Among the deceased, 5 were residents of Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district. National Technology Day is being celebrated today. The day is marked to commemorate the historic Pokhran 2 nuclear tests of 1998. It aims to pay tribute to the scientists, innovators and visionaries driving the dream of an Atmanirbhar Bharat through

0: Technology, Research and Innovation. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. In a social media post, the Vice President wished that the nation continue to make significant strides in science, innovation and technology, powered by the talent and dedication of people. Prime Minister Modi said, on this day, India recalls with pride the hard work and dedication of scientists, which led to the successful tests in Pokhran in 1998. He underlined that the government's continued focus remains on empowering talent, encouraging research and creating solutions that serve both national progress and the aspirations of citizens. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said that scientists are the true architects of the nation's pride and self-respect. Union Home Minister Amit Shah and Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh have also wished people on National Technology Day. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by the India Meteorological Department IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas. In football, India will play against host China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान हैं अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है। विभिन्न अवसरों पर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना है कि हमें पूजा

0: मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी

0: हाथ किसका अंग है जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूँ तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं? दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से एक स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है।

0: कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार की शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है
1: जी। कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
1: जी।
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता, आप ये भी तो देखें। तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयोवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्व सुलभ हो जाता है
1: जी।
0: इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: The Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple, and he is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएँ हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर कि मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं, और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति

0: मंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूहों की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय
1: उपलब्ध हैं। एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव कॉइन। इट इज अ 75 रुपी डिनोमिनेशन कॉइन and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath temple. It says Bharat India rupees 75 with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath temple.
0: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लियते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा

सोमनाथ का अमृत महोत्सव ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था,

पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनित कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील,
पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, वडोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है।

साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश पर प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में

0: पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
3: अभी आप सोमनाथ

सत्यम शिवम सुंदरम। अगली प्रस्तुति इस फिल्म से आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की हैं, शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की और संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: आपके विचार अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ गीत और भजन। कलाकार हैं प्राची कोकण ठानकर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे प्राची कोंकण ठानकर की आवाज में कुछ गीत और भजन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद होगा।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज़ में चितचोर फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे यशुदास को, बोल फाग जामी के थे और धुन राजकमल की। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों से साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया।
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित

0: हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी सम्मिलित हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोवेट्रिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रधान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कूनू नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। आज पालनपुर कूनू में हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में दो मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर कूनू श्योपुर जिले के और चंबल मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। लगभग 5000 किलोमीटर में अब इनका बसेरा हुआ है।
1: डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश धर्म निवेश एवं जैव विविधता के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों के पुनर्स्थापना को निरंतर सफलता मिल रही है और आज प्रदेश ने देश भर में चीता स्टेट के रूप में पहचान बनाई है। वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनू नेशनल पार्क और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में सक्रिय 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज भी जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई इलाकों में तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, पादरुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देशवासियों और समस्त प्रतिभावान वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कल खंडवा जिले के आवलिया में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में 10वीं, 12वीं एवं ITI उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान

0: अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से

0: अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था।

0: कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह और आप तक भेजती हूँ मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमें मालूम है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तपिश भरी दोपहरी में गर्मी से हर इंसान परेशान तो है, लेकिन इस तपिश में मुट्ठी भर गीतों की छांव आकाशवाणी आप तक पहुंचाता है। तो चलिए, आप जुड़ ही चुके हैं हमसे, आपकी फरमाइश पर कुछ गाने हम आप तक पहुंचाने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले श्रोताओं के नाम बताते हैं जिनकी फरमाइश पर आज के कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है। ये श्रोता हैं अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और ये खत आया हुआ है तिल्दा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा रानी, प्रिया रानी, ओशीम और सोमेन। अगली चिट्ठी आई हुई है सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से। हमारे श्रोताओं के नाम हैं योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रेमाबाई और ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर से अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र, सचिन और तरु। और ये खत आया है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार और गजेंद्र कुमार चंदन का, सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ के हमारे ये श्रोता हैं। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। आवाज़ आशा भोंसले की है, संगीत ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ।

और अब आइए सुनते हैं प्रोफेसर, फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं इसके लिए। गीतकार हजरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और अनुरोध आप सबका है, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से नरेश नाचानी, भारती, विनीत, प्रगति, मिथिल नाचानी। और जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका और संप्रीत पंचोलिया। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। आप भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया की भी यही फरमाइश है। और ये खत आया हुआ है सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाघ, पंजाब राव और साथ में है संदीप पाटिल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं प्रोफेसर फिल्म का ये नगमा। वो अगर याद करें हमको तो भूलें किसको, हम अगर उनको भुलाएं तो किसे याद करें।

कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, रिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं नीला आकाश फिल्म का गीत। इस गीत के लिए आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। गीतकार हैं राजा मेहदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन। ये मेरे दिल की मजबूरियां भी क्या खूब हैं, तुम्हारा राज तुम्ही से छुपा रहा हूं मैं।

0: श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ गीत और हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: श्रोता अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं सीआईडी फिल्म से। आवाजें गीता दत्त और मोहम्मद रफी की हैं, बोल जानिसार अख्तर के और धुन ओपी नैयर की। अनुरोध आप सबका है। निभोरा से अशोक देशमुख, शरद बबन, शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोक वाघ, भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं सोहन जोशी, विष्णु अग्गिता, अमृता जोशी, लोकेश, और बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया जानवी, तृप्तेश देवांगन। और ये खत आया हुआ है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता, नेतराम और भूपेंद्र साहू। और इसी गीत को पसंद करते हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सीआईडी फिल्म का ये गीत।
3: आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया।
2: दूर ही दूर से इकरार हुआ करते हैं, कुछ इशारे पसे दीवार हुआ करते हैं।

और अब आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत, एन दत्ता का संगीत। इसके लिए आवाज आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। पसंद आप सबकी है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। कमर कॉलोनी बड़वाह से इसी गीत को पसंद करते हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। और मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और अंशिका। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। यूं तसव्वुर पे बरसती हैं पुरानी यादें, जैसे बरसात में रिमझिम का समा होता है।

तो श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर कुछ गीत थे ये जो हमने भेजे आप तक। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब इसके साथ ही अपनी दोस्त सुनीता सिंह को आपकी फरमाइश कार्यक्रम से इजाज़त दें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपयोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीराम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शिवपुर जिले के कुनू नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चीता स्टेट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और देश के चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को नई सफलता मिल रही है। न्यूजीलैंड का एक प्रतिनिधि मंडल बैतूल जिले के भ्रमण पर है। ये दल मधु संग्रहण एवं जनजातीय आजीविका गतिविधियों का अवलोकन कर रहा है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पारुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। शाम 6 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:40 पर कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुनेंगे 6:45 पर। रात 8 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।

9:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है रात 10 बजे। राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद वादन राग कामोद, और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोक रंग। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हो चुके हैं, मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए

नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच की ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण होगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण, नवाचार को गति देने, अवसरों का विस्तार करने और देश के सभी क्षेत्रों में विकास में योगदान देने का एक प्रमुख आधार बन गई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चीता स्टेट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और देश के चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को नई सफलता मिल रही है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, जिंदगी की राह में हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कभी एक छोटी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानी से बचा लेती है, तो कभी एक सही निर्णय हमारे भविष्य को सुरक्षित बना देता है। समय बदल रहा है और दुनिया आगे बढ़ रही है, और आज के युवा भी अपने सपनों और अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, तेज रफ्तार जिंदगी में जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि समझदारी वही है जो हमें सुरक्षित भी रखे और सफल भी बनाए। इसी सकारात्मक विचारों और इसी सोच के साथ मैं सुरभि सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो सीधा हमारे जीवन और हमारी सुरक्षा, साथ ही हमारे भविष्य से भी जुड़े हैं। हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में, साथ ही हम जानेंगे कि हम गलत निवेश से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, शामिल करते हैं हमारे कार्यक्रम में आज का हमारा पहला गीत।

साथियों, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। सड़क पर आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी परिवार की मुस्कान बचा सकती है। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है। हर व्यक्ति जल्दी में है, किसी को ऑफिस पहुंचना है, किसी को कॉलेज, तो किसी को अपने काम पर। लेकिन इस जल्दी और भागदौड़ के बीच हम कई बार सड़क सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 11 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं, और इसमें सबसे बड़ी संख्या युवाओं की होती है। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे ड्राइविंग आती है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सड़क पर केवल हमारी नहीं बल्कि दूसरों की गलती से भी दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए सड़क पर हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए। दोस्तों, हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं होता है बल्कि यह जीवन बचाने के लिए है। इसी तरह कार में सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। आज भी कई लोग पीछे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, जबकि दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। दोस्तों, आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। कई लोग गाड़ी चलाते समय कॉल उठाते हैं, मैसेज देखते हैं या सोशल मीडिया चेक करते हैं, लेकिन कुछ सेकंड का ध्यान भटकना एक बड़ा हादसा बन सकता है। दोस्तों, साथ ही युवाओं में तेज रफ्तार और स्टंट का आकर्षण भी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए लोग अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं। सड़क पार करते समय दोस्तों, हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। यही कुछ छोटी छोटी आदतें हैं दोस्तों, जैसे वाहन का नियमित सर्विस करवाना, सही इंडिकेटर का उपयोग करना और धैर्य के साथ ड्राइविंग करना हमारी यात्रा को सुरक्षित बना सकती है। आज के युवा अगर सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाएं तो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है, इसीलिए सुरक्षित चलिए, जिम्मेदारी से चलिए। सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं है, यह जीवन के प्रति सम्मान है। तो शामिल करते हैं आज का हमारा अगला गीत।

साथियों, अब हम बात कर रहे हैं कि हम गलत निवेश से कैसे बच सकते हैं। सपनों का भविष्य तभी सुरक्षित होता है जब मेहनत की कमाई सही जगह लगाई जाए। दोस्तों, आज का समय फाइनेंशियल प्लानिंग का समय है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके पास सेविंग्स हो और आने वाले समय में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए आज इन्वेस्टमेंट यानी निवेश हमारे जीवन का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। लेकिन दोस्तों, जहां सही निवेश हमें आगे बढ़ाता है, वहीं गलत निवेश कई बार

अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बहुत जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाए तो वहां सतर्क हो जाना चाहिए। आज के समय में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग फेक ट्रेडिंग एप्स, नकली वेबसाइट्स और फ्रॉड कॉल्स के जरिए लोगों को ठगते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि लोग बोलते हैं कि हमारे बताए हुए शेयर्स खरीदिए, आपका पैसा कई दुना हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट दिखाकर लोगों का भरोसा जीता जाता है और बाद में उनसे बड़ी रकम इन्वेस्ट करवा ली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कई फ्रॉड्स इमोशनल तरीके से भी लोगों को फंसाते हैं, जैसे कि यह लिमिटेड ऑफर है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो मौका निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सही इन्वेस्टमेंट कभी जल्दीबाजी में नहीं किया जाता। दोस्तों, आगे भी हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजें जो निवेश करने से कुछ पहले याद रखनी चाहिए हमें, लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं हमारे कार्यक्रम में हमारा आज का अगला गीत।

साथियों, अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पदों का नाम है कांस्टेबल, ड्राइवर, कुक, कारपेंटर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि। पदों की संख्या लगभग 9,000 है। शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होना चाहिए और कुछ तकनीकी पदों के लिए ITI और ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है crpf.gov.in। आशा है कि आपने आज की रोजगार सूचना नोट कर ली होगी और आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हमें

सही निवेश कैसे करना चाहिए और गलत निवेश से कैसे बचना चाहिए। निवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले कंपनी या प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी चेक करें, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखें, रिव्यूज और रेटिंग पढ़ें, साथ ही गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जरूरत हो तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। दोस्तों, अपनी पर्सनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी नंबर, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। ये सभी जानकारी गोपनीय होती हैं। कई बार फ्रॉड कॉलर्स खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों से डिटेल्स मांगते हैं, और ऐसे कॉल्स से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट हैबिट्स के बारे में। सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी इनकम और जरूरत के अनुसार करना चाहिए। कई लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर किसी दोस्त ने कहीं पैसा लगाया है तो जरूरी नहीं है कि वह आपके लिए भी सही हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर पैसा अलग-अलग सुरक्षित जगहों पर लगाया जाए तो रिस्क कम हो जाता है। और तीसरी बात, इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, अगर ऐसी बचत जो जरूरत पड़ने पर काम आ सके। तो दोस्तों, आज के समय में कई सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, एसआईपीस, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। आजकल एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। इसमें लोग हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे समय में अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि हम गलत निवेश से कैसे बच सकते हैं। अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारा आज का अगला गीत।

दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कई लोग जल्दी प्रॉफिट ना मिलने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे फ्यूचर को मजबूत बनाता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की हर एडवाइस सही नहीं होती। कई लोग पेड प्रमोशंस करते हैं, जिसकी वजह से लोग गलत स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च और सही जानकारी के आधार पर करना चाहिए। दोस्तों, आज फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक समझ बहुत जरूरी हो गई है। जितने जल्दी युवा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को सही जानकारी को सीखेंगे, उतना ही उनका भविष्य सुरक्षित होगा। कमाई छोटी हो या बड़ी, अगर सही प्लानिंग हो तो भविष्य मजबूत बनाया जा सकता है। और याद रखिए, मेहनत से कमाया गया पैसा बहुत कीमती होता है, इसीलिए उसे सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित फैसले लीजिए और अपने सपनों को मजबूत आधार दीजिए। दोस्तों, जीवन में जागरूकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सड़क पर सावधानी और पैसों के मामले में समझदारी, दोनों ही हमें सुरक्षित और सफल बनाते हैं। अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह हर सही निर्णय भविष्य की मजबूत नींव बनाता है। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ मैं सुरभि सिंह और आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी और जुड़े रहिए युवाणी के साथ। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हमारा आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो का बहुत ही खूबसूरत नगमा, अन्वेषा विनीत सिंह और साथियों की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत हिमेश रेशमिया का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत। तर्ज बनाई है विशाल शेखर ने और फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।

आपके रेडियो सेट पर आ रहा है कच्चे धागे फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत नुसरत फतेह अली खान का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं विरासत फिल्म का गीत कुमार सानू और चित्रा की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Arrotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा।

0: चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है। न्यू रिलीज
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण, नवाचार को गति देने, अवसरों का विस्तार करने और देश के सभी क्षेत्रों में विकास में योगदान देने का एक प्रमुख आधार बन गई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चीता स्टेट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और देश के चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट को नई सफलता मिल रही है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना जताई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
3: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said Somnath Temple in Gujarat stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. Mr. Modi today performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the Somnath Amrit Mahotsav. The celebrations mark 75 years since the inauguration of the restored temple dedicated to Lord Shiv. In a social media post, Prime Minister Modi said, 1,000 years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi said the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1951 in the presence of the then President Dr. Rajendra Prasad, proclaiming to the world that while the attackers have faded into the dust of history, the soul of Bharat endures. Earlier addressing the gathering at the temple, Prime Minister Modi said India is moving ahead with self-confidence and that the country's cultural heritage has played a key role in this progress. He said the reconstruction of the temple by Sardar Vallabhbhai Patel reflected India's commitment to preserving its heritage with pride.
3: Azadi ke samay Sardar Sahab ne 500 se zyada riyasaton ko jodkar ek Bharat ka aadhunik swarup ghada tha. To saath hi Somnath ke punarnirman se unhone duniya ko bataya tha Bharat keval आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
5: The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the 5th meeting of the informal group of ministers on West Asia chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi today. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement the Prime Minister's appeal at the ground level. The Prime Minister had exhorted the people to reduce petrol and diesel consumption by using metros and public transport and opting to carpooling. He had also urged the citizens to help conserve foreign exchange reserves by refraining from unnecessary foreign travel, choosing domestic tourism and celebrations within India, and avoiding non-essential gold purchases for a year. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari today said that the state government has decided to transfer land to the Border Security Force within 45 days for erecting a fence along the Bangladesh border. Mr. Adhikari announced the implementation of the center's flagship Ayushman Bharat Health Scheme and several other initiatives of the central government in the state. Besides, the tenures of the nominated members, directors and chairpersons of the non-statutory boards, organizations, bodies and public sector undertakings of the state government of the West Bengal have been terminated today with immediate effect. The decisions were taken in the first cabinet meeting held today after the formation of the new government in the state following the recent assembly polls. Benchmark domestic equity indices fell around 1.5% today as a fresh flare-up in US and Iran tensions led to a rise in crude oil prices and dampened investor sentiment. The BSE Sensex plunged 1,313 points to close at 76,015. The NSE Nifty lost 360 points to settle at 23,816. In cricket, India continued to hold the number one position in the latest ICC men's ODI team rankings following the annual update released today. India's rating slipped by 1 point from 119 to 118. New Zealand is on the second position, gaining 2 points to move up to 113. Australia stayed third with an unchanged rating of 109. The biggest movement inside the top five came from South Africa, which climbed above Pakistan to move into the fourth place. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है सदाबहार गीत का। सदाबहार गीत में मैं विमलेश

जी अभी आपने पारस मणि फिल्म से बेहतरीन संगीत सुना और अब आप सुनेंगे फिल्म घर से ये बेहतरीन संगीत लता मंगेशकर जी की आवाज में।

0: वर्तते। तेन प्रोदीरितं यत् सोमनाथ अमृत पर्व केवलं भूतकालस्य उत्सवः नास्ति, अपितु आगामी सहस्र वर्षाणि यावत् राष्ट्रस्य कृते प्रेरणास्तोत्रः भविष्यति।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवसावसरे प्रधानमंत्री प्रोक्तवान यत् अद्यतन दिवसे एवं भारतस्य देशस्य आद्यत्वेन परमाणु त्रयाणां परीक्षणं जातम्। अनेन अस्माकं वैज्ञानिकाः विश्वस्य पुरतः भारतस्य सामर्थ्यं प्रदर्शितवन्तः।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: पूर्वाहणे प्रधानमंत्री प्रभास पाटनम संप्राप्य हमीरजी गोहिल क्षेत्रम यावत् 1 किलोमीटर दीर्घम पथ प्रदर्शनम अकरोत्। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी च तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य प्रतिमायां पुष्पार्पणं विधाय श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य उद्घोषितवान् यत् राज्य सर्वकारेण बांग्लादेश सीम्नः सुरक्षा प्राचीर निर्माणार्थं सीमा सुरक्षा बलाय भूहस्तांतरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। नूतन प्रशासनस्य निर्माणानन्तरं प्रथमायां मंत्रिमंडल गोष्ठ्यां एते निर्णयः स्वीकृताः। मुख्यमंत्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी 45 दिनेषु सीमा प्राचीर रचनार्थं भूम्यधिकारः सीमा सुरक्षा बलाय प्रदास्यते।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्रिणा श्री अधिकारी इत्यमुना राज्ये केन्द्र सर्वकारस्य महती आयुष्मान भारतम स्वास्थ्य योजना अन्याः च राष्ट्रीय योजनाः प्रवर्तयितुं घोषणा कृता। अनेन सहैव मंत्रिमण्डलेन विद्यालय शिक्षक पदानां आवेदकानां कृते आयुः सीमायां 5 वर्षाणां वृद्धिः अपि स्वीकृता, येन युवभिः अधिकारावसराः प्राप्स्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरंतर प्रयासैः भारतं पश्चिम एशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबाद नगरे एकां जनसभां संबोधयन् श्रीमोदी नागरिकेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत् आगामी 1 वर्षं यावत् तैलंधनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेश यात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्ण क्रयणे नियन्त्रणं तथा च स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः विहितः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: केन्द्र प्रशासनेन पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य विकसित भारत आजीविका प्रत्याभूति अभियान अधिनियमः VBG रामजी इति अधिसूचितः। अधिनियमोऽयम् अस्य वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् कृत्स्नेहि देशे प्रवर्तयिष्यते। वैश्विक प्रतिकूल स्थितिः सत्यपि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा वर्तते। अद्य प्रकाशितेन SBI शोध इत्यस्य प्रतिवेदनेन अनुमीयते यत् आगामि वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था 6.6% यावत् वर्धिष्यते। प्रतिवेदने इदमपि प्रोक्तं यत् GDP वृद्धिः प्रायः 7.2% भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता दलं विरुध्य संयुक्त विपक्षी मोर्चा इति निर्मातुं ममता बैनर्जी महोदयायाः प्रस्तावः कांग्रेस वामपंथी दलैः निराकृतः। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बैनर्जी कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलं समेत्य सर्वेषां विपक्षी दलानां भाजपा विरुद्धं एकत्रीकरणाय आह्वानं कृतवती। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन बृहस्पतिवासरं यावत् देशस्य उत्तर पश्चिम भागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघगर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्ड वायुनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपल वर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन उक्तं यत् हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्ड राज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्र अवधेयं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते इति वार्ताः।

का प्रायोजित कार्यक्रम यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की गली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। संगीत ओपी नैयर का है और शब्द रचना SH बिहारी की।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में किस्मत फिल्म का गीत, गीतकार SH बिहारी और संगीतकार OP नैयर।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है विज्ञान तकनीक प्रौद्योगिकी का उत्सव राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आलेख वीणा सबलोक पाठक, वाचन स्वर राणा शाहिद।

देश भर में 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यह होता है प्रौद्योगिकी, तकनीक और विज्ञान के उत्सव का दिन। देश को ताकतवर बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान रहा है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प के बल पर विश्व स्तर पर भारत की पहचान स्थापित की है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का संबंध भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। इतिहास में यह तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इसी दिन भारत ने 1998 में राजस्थान के पोखरण में दूसरी बार सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसे ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 कहा जाता है। इस उपलब्धि को हमेशा याद रखने के लिए ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने ही इस दिवस को मनाने और इसको प्रौद्योगिकी दिवस नाम दिया था। 2 दिन बाद देश में 2 और परमाणु हथियारों का परीक्षण हुआ। इस परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति है। इसके अलावा कई और अहम तकनीकी क्रांति इसी दिन संभव हुई थी, जैसे भारत के विमान हंस ने 1998 में इसी दिन उड़ान भरी थी। हंस 3 को नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी ने बनाया था। वह 2 सीटों वाला हल्का विमान था। 11 मई 1998 को ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने त्रिशूल मिसाइल का आखिरी परीक्षण किया था। फिर उस मिसाइल को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। मानव जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो विज्ञान और तकनीक से ना जुड़ा हो। संचार, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग और रक्षा जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में तकनीक ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, वीडियो कॉल, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स जैसी सुविधाओं ने जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। कोविड महामारी के दौरान तकनीक की उपयोगिता और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आई। ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम, टेलीमेडिसिन और डिजिटल सेवाओं ने कठिन समय में लोगों की सहायता की। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत की तकनीकी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला विश्व का पहला देश बना। इतना ही नहीं, स्वदेशी मिसाइलें, आधुनिक रडार प्रणाली, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और ड्रोन तकनीक देश की सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान देश में तकनीकी क्रांति का बड़ा माध्यम बना है। आज लोग घर बैठे आधार, बैंकिंग, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के विस्तार से गाँव भी तकनीकी रूप से सशक्त हो रहे हैं। भारत आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज किसान मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौसम की जानकारी, बाजार भाव और कृषि सलाह आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। आज भारतीय युवा स्टार्टअप सॉफ्टवेयर विकास, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर तकनीक जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। जहाँ तकनीक ने मानव जीवन को आसान बनाया है, वहीं कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। साइबर अपराध, डेटा चोरी, फेक न्यूज, तकनीकी बेरोजगारी और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं चिंता का विषय हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमें यह संदेश देता है कि विज्ञान और तकनीक किसी भी राष्ट्र की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और युवाओं की प्रतिभा ही देश को भविष्य में तकनीकी महाशक्ति बनाएंगी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की, जिसकी पहली रिपोर्ट है ग्वालियर जिले से, जहां जनगणना के तहत चल रहे प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकान गणना के काम सहित 34 बिंदुओं पर जानकारी संकलित की जा रही है। पेश है ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
1: जनगणना के तहत चल रहे प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के काम सहित 34 बिंदुओं में जानकारी संकलित की जा रही है। ग्वालियर जिले में भी जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा निर्धारित जनगणना कार्यक्रम के तहत जनगणना का प्रथम चरण कार्य जारी है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने हाल ही में शहर में चल रहे जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू दर्पण कॉलोनी क्षेत्र में प्रगणकों द्वारा की जा रही जनगणना की वस्तु स्थिति जानी। साथ ही प्रगणक श्रीमती नीलम राजपूत के साथ न्यू दर्पण कॉलोनी पहुंचकर एक घर की ऑनलाइन गणना कराई। इस अवसर पर एसडीएम अतुल सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने न्यू दर्पण कॉलोनी क्षेत्र की प्रगणक श्रीमती नीलम राजपूत व ब्रजेश द्वारा जनगणना के लिए बनाए गए नजरी नक्शा देखे। साथ ही इस नक्शे के आधार पर अब तक की गई मकानों की गणना की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि गत 1 मई से शुरू हुआ जनगणना का प्रथम चरण 30 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य किया जा रहा है। प्रगणकों द्वारा घर घर पहुंचकर मोबाइल ऐप पर निर्धारित प्रपत्र में जनगणना संबंधी 34 बिंदुओं में जानकारी भरी जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की दूसरी खबर है गुना जिले से, जहां पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान युवक युवतियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से

0: शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
1: शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत गुना जिले के पिछड़ा वर्ग के युवाओं को पुलिस, आर्मी सहित सशस्त्र बल की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संबंध में निरीक्षक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग गुना राकेश राठौड़ ने जानकारी देते हुए आकाशवाणी को बताया।
2: अभी अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने बहुत शानदार योजना प्रोवाइड की है। ये योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों के लिए है। ये एक प्रकार से अवसर उपलब्ध कराया अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से, जिसमें 100 युवक और 100 युवतियों को ट्रेनिंग करवाई जाना है, जिसमें भोजन की व्यवस्था, रहने खाने और सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ में इसमें 4 घंटे की कोचिंग, 3 घंटे का फिजिकल ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें अभी आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण प्रोग्राम 15 मई 2026 को प्रारंभ होने जा रहा है। ये एक प्रकार से बहुत शानदार अवसर है उन युवा और युवतियों के लिए जो पुलिस, अग्निवीर भर्ती, SSC, GD, CRPF और अन्य सैन्य बलों की तैयारी कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है। मेरा सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों से निवेदन है कि इस योजना में आप आए, आवेदन करें और इस योजना का अवश्य लाभ उठाएं। साथ में इस योजना में जो प्रशिक्षणार्थी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, उन युवक युवतियों को एक सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दिया जाएगा, जो काफी लाभकारी आप लोगों के लिए साबित होगा। इसमें योग्यता में ध्यान रखना है कि उन्हीं युवाओं को इसमें मौका मिलेगा जो 12वीं पास कर चुके हैं। योजना मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसमें 1000 रुपए छात्रवृत्ति जो बॉयज है उनको और जो 1100 रुपए छात्रवृत्ति जो गर्ल्स है उनको मिलेगी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
0: हमारी अगली खबर है छतरपुर जिले से, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम जारी है, जिसके लिए जिले में 80 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां स्लॉट प्रक्रिया के जरिए किसानों से सीधे गेहूं खरीदा जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे से।
3: छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए जिले में 80 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सीधे किसानों से सेवा सहकारी समितियां गेहूं खरीदी कर रही हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारी ने हमें जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी का काम प्रारंभ हो गया था, जो शासन के निर्देशानुसार आगामी 23 मई तक जारी रहेगा। जिले को 8,20,000 क्विंटल गेहूं खरीदी का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध अभी तक 7,24,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके लिए किसानों द्वारा लगातार स्लॉट बुक किए जा रहे हैं। शुरुआती तौर में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई, अब बड़े किसानों के भी स्लॉट बुक हो रहे हैं। सभी खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें छाया पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2585 रुपए प्रति क्विंटल एवं राज्य सरकार का बोनस 40 रुपए प्रति क्विंटल, इस तरीके से 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उनके सीधे बैंक खातों में भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। खरीदी केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो, इसके लिए सतत निगरानी टीमें बनाई गई हैं, जो निरीक्षण कर रही हैं। हाल ही में छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिले के घुआरा खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां पर क्वालिटी FAQ की नहीं मिलने पर उन्होंने सर्वेयर को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों से 50 किलो 200 ग्राम प्रति बोरी मानक तौल ही तौलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने SDM, तहसीलदार, खाद्य अधिकारी सभी को सतत निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर से सुनील पांडे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं धार जिले की ओर, जहां जनगणना 2027 के पहले चरण के मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
4: पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी धार जिले में 8वीं जनगणना का शंखनाद 1 मई से हो गया है। जनगणना 2027 के दो चरणों के प्रथम चरण कार्य के तहत मकानों की गणना एवं सूचीकरण का कार्य 30 मई 2026 समयावधि में पूर्ण किया जाना है। भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2027 के प्रथम चरण के मकान सूचीकरण मकानों की गणना के सफल क्रियान्वयन हेतु धार जिले में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। शासन द्वारा तैयार किए गए विशेष जनगणना रथ

0: जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमारी जनगणना हमारा विकास के संदेश के साथ भ्रमण कर रहे रथ प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर LED स्क्रीन के माध्यम से जनगणना से संबंधित लघु फिल्मों के साथ जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं बैनर पोस्टर आदि माध्यमों से भी लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नागरिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे प्रगणकों को अपने परिवार मकान की स्थिति और उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के संबंध में बिल्कुल सही और सटीक जानकारी प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दे। जनगणना पूरी तरह से हाईटेक हो रही है। जनगणना हेतु जिले में 4060 प्रगणक और 658 सुपरवाइजर फील्ड में उतरकर इन ब्लॉकों में मकानों की गिनती कर रहे हैं। इसके पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई डिजिटल स्वगणना के माध्यम से भी हजारों लोगों ने स्वगणना पोर्टल में दर्ज कराई थी। स्वगणना के तहत डेटा और प्रक्रिया की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखे जाने के कारण हजारों लोगों ने घर बैठे आसान तरीके से अपनी जानकारी स्वगणना पोर्टल के में दर्ज करवाई, जिससे अब इन लोगों को प्रगणकों को सिर्फ SID ही देना पड़ रही है। प्रशिक्षण प्राप्त प्रगणक और सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों की गिनती करने के साथ उसमें रह रहे नागरिकों से 33 बिंदुओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गलत जानकारी देने या जानकारी छुपाने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं गत दिनों जनगणना निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर नमित यादव धार पहुंचे और उन्होंने प्रगणकों के कार्य करने के तरीकों को जाना, साथ ही जहां गणना हुई है वहां पर जाकर लोगों को क्रॉस वेरिफिकेशन किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अगली खबर है डिंडौरी जिले से, जहां बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डिंडौरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
2: खेल युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार डिंडौरी जिले में बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का आयोजन 5 मई से 5 जून 2026 तक किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक जिला एवं विकासखंड मुख्यालयों में संचालित किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्तर पर एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एवं कराते सहित 4 अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में 2 खेलों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। खेल प्रशिक्षण के साथ अन्य विभागों के सहयोग से व्यक्तित्व विकास, मोटिवेशनल सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक सहभागिता, साइबर जागरूकता तथा नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
1: अब हम रुख करते हैं छिंदवाड़ा जिले की तरफ, जहां प्रशासन ने ई विकास प्रणाली के जरिए किसानों को बड़ी सहूलियत दी है। प्रशासन की इस पहल से खाद के लिए केंद्रों पर लगने वाली कतारें कम हो गई हैं और किसानों को सुगमता से खाद उपलब्ध हो रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति।
3: गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की हालिया बैठक में जिले की कृषि प्रगति को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं।
4: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: विकसित भारत,
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
3: ईटी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीटी डायरेक्ट।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसानवाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
4: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ौदा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23,816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सोझो में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात्रि 8:15 पर 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद वादन, राग होगा कामोद। 1 नजर हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आठ बजकर 30 मिनट पर सुनेगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे प्रकाश पारनेकर की गाये चंद भजन। समय रहेगा सुबह 9:15। 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम शब्द सागर, जिसमें आप सुनेगा विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ और एक और काव्य पाठ वसंत सकरगाई से। जिले की चिट्ठी होगी सुबह 10 बजे। 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुनेगा दिनकर कैकिनी का ख्याल गायन, राग होगा दस देसी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे सुनेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे और दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनेगा धारावाहिक जादूगर को सलाम का 12वां भाग। समय रहेगा 12:30।

दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुनेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा वाणी। हमारे ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 2 बजे, शाम 5:33 पर, रात्रि 8:15 पर और 10 बजे। चित्र पर संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 3:30 पर और शाम 6:30 पर। शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, कृषि के साथ वानिकी के लाभ, जानकारी देंगे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी और समय जैसा कि आप जानते हैं शाम 7:21। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में, नवश्क 30 मिनट पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम जिसमें आप सुनेंगे महफिले समा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनाएंगे पंडित दिनकर काकिनी का ख्याल गायन, राग होगा देसी।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
6: बन गया बजट?
2: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना,
5: पिछले महीने तो ली थी।
6: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
6: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव कल, जुटेंगे फ्रांस के प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश पर निवेश में होगा मंथन। देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान। और प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 57। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनू नेशनल पार्क में विमुक्त किए 2 मादा चीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर गौरवशाली और शाश्वत है और देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक है। श्री मोदी ने आज गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि पवित्र सोमनाथ मंदिर में लहराता ध्वज भारत की आस्था की विजय का प्रतीक है और लाखों भारतीयों की

0: सामूहिक चेतना की दिव्य घोषणा भी है।
1: हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो, साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार गारंटी का अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। देश भर में नए ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। भोपाल में कल इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में सहभागिता कर वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 के अंतर्गत परम विशिष्ट, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत सुख सुविधाओं एवं कल्याण का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार की राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
2: मैंने पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर के मंजूरी दी है कि हमारे डीजी पहले 25,000 तक का पुरस्कार दे रहे थे, अब उनको अधिकार 50,000 तक हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से निचले स्तर तक, SP के स्तर तक भी हमारे जवानों को पुरस्कार की राशि डबल करने का निर्णय हमने किया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी पुलिस जो जो चाहेगी हम करने को तैयार है।
0: भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण BIS प्रमाणन, खिलौना क्लस्टर स्थापित करना और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना शामिल है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से भारत में निर्मित या आयातित सभी खिलौनों के लिए ISO 8124 मानकों पर आधारित अनिवार्य BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पूरे उद्योग में उच्च सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 1,763 करोड़ रुपए की लागत से 2,117 किलोमीटर लंबी 973 सड़कों का निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने

में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। सहकारिता मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम तेल खाने, ईंधन की बचत करने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। खरगोन में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सारंग ने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध जैसे हालातों के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और ईंधन पर असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि तेल की खपत कम होगी तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फिजूल खर्ची वाले आयोजनों से बचने की भी अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगरमालवा जिले के स्वायत्त कला में जल संरक्षण का संदेश देने हेतु कल एक विशाल भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई। नीमच जिले के जावत में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन अभियान परिषद जावत द्वारा संवारिया महाराज स्थित बालाजी मंदिर रामघाट पर जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में भी 23 मई तक गेहूँ खरीदी होगी। कलेक्टर ने किसानों की स्वीकृति लंबित न करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर में आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा आज जिला जेल में दिव्यांगजन कैंप का आयोजन किया गया और सीहोर कलेक्टर बाला गुरु के ने आज जनगणना कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में जनगणना कार्यों में गति लाने के सख्त निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
6: बेटा,
7: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
6: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
5: कहाँ
8: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बड़ी बहू,
7: ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
7: अरे, और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
1: मेरी गुड़िया की ना।
5: पर दादी, आपके नाम?
9: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
7: छुप छुप बोलो क्या?
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल पर बैठे सगे भैया बहनन खान नंदिनी की राम राम। भैया देखो, बात करें हम अक्षय ऊर्जा की, तो अक्षय ऊर्जा असीमित और प्रदूषण रहित ऊर्जा है, जी को नवीनीकरण होत रहते है। और भैया ऊर्जा संरक्षण की आदतों को अपनाने के साथ ही ऐसे अक्षय ऊर्जा संसाधनों की ओर कदम बढ़ानो आज की समय की सबसे बड़ी मांग है। भैया वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन से बचाव की दृष्टि भी अक्षय ऊर्जा संसाधनों को प्रोत्साहित करो जानो बहुत जरूरी है।

ऊर्जा के वो प्राकृतिक स्रोत जिनको क्षय नहीं होते हैं और जिनको नवीनीकरण होत रहते हैं और जो प्रदूषणकारी नहीं है, उन्हें अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहो जाते हैं। वे हैं सूर्य, जल, पवन, ज्वार भाटा, भूताप, यह अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। और भैया ये अपने देश में आगे आवे वाली पीढ़ियों के लाने अमृत समान है। भैया देखो, हमारे पूर्वजों ने भी हमें अमृत प्रदान करो हतो, लेकिन हमने अपने जीवन शैली और विकास के नाम पर इतने बदलाव कर दिए और करते ही चले जा रहे हैं। भैया हम यह भूल गए हैं कि आधुनिक जीवन और हमारे पूर्वजों के द्वारा सौंपे उन अमृत समान पर्यावरण को हमने खुद ही जहरीलो बना दो है। जैसे केवल एक ही उपाय है कि इस जहर को हटाकर फिर से अक्षय ऊर्जा को स्वीकार करके अपने अस्तित्व को बचाएं। भैया गैर अक्षय ऊर्जा में देश की निर्भरता बढ़ने के कारण विश्व भर में गैर अक्षय ऊर्जा संसाधनों में कमी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ देश भर में जहरीली वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु प्रदूषण जैसी परेशानियां बढ़ते ही चली जा रही हैं, जो कि एक चिंता को विषय बना जा रहा है। यही चिंता को पूरी तरह से दूर करके ऊर्जा की आपूर्ति को हमेशा के लाने कायम और स्थायी बनावे के लाने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दव जा रहा है। और भैया अपने शासन द्वारा बहुत सी ऐसी परियोजनाएं पर काम करो जा रहा है जो कि अक्षय ऊर्जा की तरफ ध्यान केंद्रित कर सके। भैया अक्षय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जी को कोनो अंत नहीं है, जी ऊर्जा को महत्व अमूल है, जाको सबसे बड़ो लाभ है कि यह सृष्टि को, पर्यावरण को, मानव और जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती। और अक्षय ऊर्जा सभी क्षेत्रों में ऊर्जा के हर छोटे बड़े कामों को करवे में सक्षम है। हम जाए पूरे विश्व भर में फैलाना चाहते हैं जिसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा जा सके। अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वे हैं सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वह सौर ऊर्जा का है, जी की ऊष्मा ऊर्जा को एकत्रित करके बिजली बनावे में उपयोग करो जाते हैं। और है भैया एक स्रोत है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा हमें प्राकृतिक रूप से चलवे वारी वायु से मिलत है, जो कि पवन चक्कियों और पवन हरबाइन के उपयोग से हवा को बिजली उत्पादन करवे की अनुमति दे। और एक स्रोत है जल विद्युतीकरण ऊर्जा। जल के उपयोग से उत्पन्न करी जावे वाली ऊर्जा जल के बहते प्रभाव को बांध या जलाशय को निर्माण करके जल के गति को उपयोग बिजली उत्पादन में करो जाते, जैसे भैया बिजली बनाई जाते। और भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के निचले सतह में जमा हुई गर्म करवे वाली ऊर्जा, जैसे गर्म झरने और ज्वालामुखी के ऊष्मा को उपयोग ऊर्जा के स्रोत में करो जाते हैं। और है एक स्रोत है जैव ऊर्जा। जैविक ऊर्जा जीवित जीवों और पौधों की सामग्री से प्राप्त करी भई ऊर्जा होत है, जिसे बायोगैस के रूप में परिवर्तित करके ईंधन और बिजली उत्पादन में उपयोग करो जाते, जैसे एथेनॉल, बायोडीजल और मीथेन गैस। और भैया अक्षय ऊर्जा की महत्ता अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लाने बहुत ही अच्छी है। भैया देखो हम चर्चा आगे करेंगे, अब सुनते हैं संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: भैया देखो, जल सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है, जल है तो कल है, जाको अर्थ है कि पानी हमारे भविष्य को आधार है। भैया अगर आज हम जल को संरक्षण करेंगे तभी आगे आवे वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकेंगी। देखो भैया, हम भोजन के बगैर रह सकते हैं लेकिन पानी और जल के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। जय के लाने जल को संरक्षण कर वो बहुत जरूरी है। भैया बूंद बूंद पानी हमारे लाने बहुत कीमती है। अपने देश की बढ़ती भई जनसंख्या और बढ़त भय उद्योग स्तर ने पानी के संकट को और भी गंभीर बना दो है। तो भाई आवे वाले समय में पानी को संकट जो है बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। जैसे अभी से ही हमें जाके लाने जागरूक होने हैं। पानी की बचत हम कर सकते हैं, पानी को कम से कम मात्रा में उपयोग करें, ऐसे ही व्यर्थ पानी को ना बहाएं, पानी को सही तरीका से उपयोग करें। भैया जैसे नहात समय शावर को इस्तेमाल ना करके बाल्टी मग्घा को इस्तेमाल करें। और भाई हम गाड़ी मोटर जोन धोत समय जोन पानी की अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, ले जम लगा देते हैं, शावर से धोते हैं पानी को मोटर को और व्यर्थ पानी बहते हैं जैसे, तो भैया बहुत कम और थोड़े से पानी में हम अपने गाड़ी को धो सकते हैं। हम बाल्टी से मग्घा से गाड़ी को धोएं। अपनी बहनें रसोई में काम करती हैं, बेबी पानी की बचत कर सकती हैं। सब्जी भाजी धोने है पानी में हम बाल्टी में भर कर रखें, बिना हम जो बाल्टी में पानी है जो सब्जी हम धो रहे हैं जो बाल्टी में पानी बचो है वह पानी को हम डाल सकते हैं पेड़ पौधन में, तो जैसे अपने पानी की बचत हो जाते। तो भैया पानी की बचत के लाने सभी को जागरूक होने हुए, छोटे बच्चन को भी पानी की बचत के लाने बताएं, जैसे इनकी आदत भी पड़ेगी और पानी की बचत भी होगी और व्यर्थ पानी भी नहीं बहेगा। तो भैया पानी को बचाओ अपने पर्यावरण के लाने बहुत जरूरी है। पानी की को कुशलता से उपयोग करके भैया हम पानी को बचा सकते हैं। पानी का बचाओ बहुत जरूरी है, जाकी जरूरत हम सभी के लाने हैं। भैया जल के संरक्षण के लिए हम सभी को योगदान देना चाहिए, जाके लाने सभी को जागरूक होने हुए को। हम जैसो काम करेंगे वैसे ही घर के छोटे बच्चा करेंगे, नल को ऐसे ही खिलौना छोड़ दें, पानी को इस्तेमाल करवे के बाद तुरंत ही नल की टोटी को बंद करके रखें, ऐसे ही पानी को हम बचा सकते हैं और पानी को बहावे से रोक सकते हैं। जा बात को ध्यान रखें कि पानी की बचत हम सभी के लाने बहुत जरूरी है। भैया देखो, जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बूंद बूंद पानी हमारे लाने कीमती है। भैया हमें वर्षा को जल संरक्षण करवो और पानी को सदुपयोग करवो बहुत जरूरी है। जल को संरक्षण हमारे लाने बहुत जरूरी है। हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जाके लाने सभी को आगे आने होएगो और अपनी दैनिक आदतों को भी सुधारनो पड़ेगो। व्यर्थ पानी को ना बहाएं और अपनी खेती में भी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को इस्तेमाल करें, जैसे टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, जिसे कम पानी में अपने पूरी फसल पर पूरे खेत में सिंचाई हो जाते हैं। तो भैया हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम पानी की हर बूंद को बचाएंगे, काहे कि यदि आज हम पानी को बचाएंगे तब ही हमारा कल सुरक्षित होएगा। भैया हम देखो चर्चा आगे करेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चन भैयन के लाने अच्छे से लोकगीत सुनवा दें, तो सुना थे।

0: जाओ गांव हथो छोटेलाल प्रजापति और साथी ने। और भैया हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से रोज कोई ना कोई ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जैसे भैया सुनत हैं और इनसे वे लाभ भी उन्हें मिलत है, इनसे फायदा लेते हैं। तो भैया आज जो हम भेंट वार्ता लेकर आए हैं वाको विषय है फसलों में मौसम पूर्वानुमान द्वारा कीट रोग नियंत्रण। वार्ताकार हैं श्री विजय प्रताप सिंह और इनसे बता रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। भैया ये जो भेंट वार्ता है पुनः प्रसारित है, तो सुनत है भेंट वार्ता।
1: किसान श्रोताओं नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में और चौपाल कार्यक्रम में आप कई इंटरव्यू सुनते हैं और इन इंटरव्यूज का उद्देश्य रहता है कि आप अपना जो किसानी का काम है यानी कि खेती का जो काम है उससे अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। और आप ही क्यों, हर इंसान की इच्छा रहती है कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें अच्छी से अच्छी आमदनी कर ले। सरकार की भी ये मंशा है कि हमारा किसान की दुगनी इनकम होनी चाहिए, लेकिन उसको ये जरूरी है कि समय के अनुरूप वो अपनी फसल ले। वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं कि इस समय क्या प्रभाव पड़ेगा, वैज्ञानिक नई नई तकनीकें ला रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, और इन सबको अगर हम अपने किसानी में या अपनी खेती में शामिल करते हैं तो नेचुरली हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो फसलों में मौसम पूर्वानुमान द्वारा कीट रोग नियंत्रण, आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी श्री विजय प्रताप सिंह जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार जी।
1: विजय जी, ये जो मौसम चल रहा है कि मौसम में कई बार अटखेलियाँ देखने को मिलती हैं, हो सकता है कल ना हो सकता है कभी रही हो, और इस समय जायद का मौसम चल रहा है और कद्दू वर्गीय सब्जियां चल रही हैं, तो वर्तमान समय में अगर हम फसलों में मौसम का पूर्वानुमान लाएं कि किस तरह से उससे हम अपनी फसल को बचा सकें, चाहे कद्दू वर्गीय हो, चाहे खरबूजा हो, तरबूज हो, और भविष्य की संभावना, तो किस तरह से हमारे किसान को ध्यान रखना चाहिए।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अभी आपने देखा है जायद का सीजन चल रहा है और अभी प्याज की फसल कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग खेतों में लगी हुई है और कुछ लोग उसको निराई गुड़ाई द्वारा उखाड़ भी रहे हैं। तो अभी ये जो बारिश का जो अनुमान या पूरा अनुमान लगाया जा रहा है ये क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है जो आगामी 5-7 दिन तक रहने की उम्मीद है या आगामी भी दिन रहेगा। इससे क्या है, अगर आप अपनी प्याज की फसल ले रहे हैं या जिन्होंने उसको उखाड़ लिया है तो उसको उखाड़ने के तुरंत बाद ही क्या है, थोड़ा छायादार में रखें, 5 से 7 दिन छायादार में सुखाएं और उसके बाद ही उसका भंडारण करें। इससे क्या है, वो ना तो सड़ेगी और ना गलेगी। जैसे भी बात करते हैं मूंग लगी हुई है, जायद में मूंग का जो है काफी एरिया बढ़ गया है। मूंग में अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआती अवस्था की अगर बात करें तो उसमें रस चूसक कीट बहुत आते हैं, मच्छर भी रहता है, एफिड जैसेड काफी कीट रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या है, अगर फूल अवस्था आने से पहले अगर ये रोगों का प्रकोप आपके फसलों में है तो उसके लिए क्या है, आप क्लोरोप्लस साइफरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं जिससे आपके रस चूसक जैसेड एसिड जितने भी कीट हैं, सामान्य मच्छर, काला मच्छर, हरा मच्छर, इनसे जो है आपको निदान मिल जाए। इसके अलावा क्या है, अगर पत्तियों में चितकबरा रंग दिखाई देता है तो उस पौधे को बहुत ही सावधानी पूर्वक हाथों में ग्लव्स पहन ले, नहीं हो तो आप जिस पॉलिथीन में सब्जी लाते हैं उसको हाथों में पहन के उस पौधे को उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद क्या, एकत्रित करें और उसको जमीन में कहीं गाड़, उसको फेंके ना और उसको कहीं जलाए ना। ये एक विषाणु रहित रोग रहता है जो एक दूसरे के टच में हवा के टच से फैलता है जिससे आपकी फसल जो है वो काफी हानि हो सकती है। दूसरी चीज क्या है, अगर मूंग की फसल में सफेद मक्खी की समस्या आती है तो इसके लिए क्या, एसिटामाइप्रेट 20 SC या एमिडाक्लोपिड 17.8 या थायोमेटोक्सोन 25 WG, इन सभी दवाओं का 0.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार की अगर आपको कीट लगते हैं या जनित रोग लगते हैं तो उससे आपको निदान मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर मूंग में रस चूसक कीटों की बात करें और अगर वो इन दवाइयों से या उस समय मौसम की स्थिति को देखते हुए क्या है

0: समय उमस का समय भी है, जैसे ही बरसात होती है तो उसके बाद मौसम खुलता है तो उमस पैदा हो जाती है, तो उस समय क्या है, रस चूसक कीटों की या जनित रोग की समस्या उत्पन्न ज्यादा हो जाती है। उसके लिए आप क्या है, थायोमेथोक्सोन 25WG का स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इसको जो है 0.3 पर लीटर ग्राम पानी में, या सीधा एक बात कहें किसानों के लिए 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में आप इसका जो है वो स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: ये तो आपने कुछ फसलों की बात की, अब हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें, क्योंकि वो भी किसान के लिए बहुत आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत है और कहा भी जाता है कि सब्जियां भी हमें किसानों को उगानी चाहिए। और हमारा कई सारा किसान या बहुत सारे किसान अपने खेत में 100% तो नहीं पर 30-40% तक, या कई किसान 100% सिर्फ सब्जी पर ही निर्भर है।
0: देखिए जैसा कि अभी है, अभी कद्दू वर्गीय फसलें लगी हुई है। कद्दू वर्गीय फसलों में सबसे पहले तो ये है कि उसमें निराई गुड़ाई करें, खेत को बिल्कुल साफ रखें, मेड़ों को साफ रखें। उसके बाद भी जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उसमें एक लाल कीट आता है, लाल कीट का बहुत प्रकोप रहता है, ये फल में फ्रूट्स में मतलब छेद कर देता है। इसके लिए आप क्या है, मार्केट में डाइक्लोर वाश दवाई आती है जिसको 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और आमदनी भी, इससे उपज अच्छी मिलेगी तो आमदनी भी अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज अगर बात करें कद्दू खरबूजा और बटी, इसमें अगर फटने की समस्या क्या है, उसमें बीच में क्रैक हो जाता है, मार्केट में उत्पादन नहीं मिलता है,
1: कीमत कम हो जाती है
0: क्योंकि क्या है, किसान या जो भी कोई ग्राहक रहता है उसको देखता है अगर वो सही है तो लेता है। तो इसके लिए आप क्या करें, 6 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर आप इससे स्प्रे कर दें अपनी कद्दू वर्गीय फसलों में, बटी में, खरबूजा में, तो उससे जो फटने की समस्या रहती है, क्रैकिंग की जो समस्या रहती है वो उससे नहीं आ रही।
1: आप बटी की बात कह रहे हैं, शिवपुरी में रायचंद खेड़ी की बटी की मिठास अलग है और हमारा दूसरा किसान अन्य गांव में लगा रहा है उसमें मिठास वनस्पत कम है, तो वो कुछ अच्छा प्रयोग करते हैं कि दूसरा किसान कुछ कम मेहनत करता है?
0: नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये कुछ चीजें क्लाइमेट और भूमि पे भी डिपेंड करती है, सॉइल पे भी डिपेंड करती है। प्रैक्टिस वही है, कल्टीवेशन वही है, लेकिन एक मौसम या जमीन का उसको वो कह लें, उस वजह से उसमें जो है ये मिठास या वो
1: मौसम का तो हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि रायचंद खेड़ी भी शिवपुरी में है और दूसरा कस्बा भी शिवपुरी में, पर मिट्टी का प्रभाव या उस जगह पर जो पानी है, उस जगह पर उसका जो पानी का सोर्स है उसका कुछ प्रभाव पड़ता होगा तो उसके कारण मिठास कुछ ज्यादा आती है। तो आपने ये दो चीजों की बताई, लेकिन इसके अलावा इस समय टिंडा भी आ रहा है, भिंडी भी आ रही है, कद्दू तो है ही, लौकी है, शिमला मिर्च भी चल रही है।
0: जैसे कि अभी आप बात करें मूर्त है फसलों की, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, यहाँ अपने फल की बात, पपीता भी हो गया, तो इसमें क्या है, जो पत्ती मरोड़क कीट लगता है या बोल रहे लीफ कर, लोग के लिए अपन रोकथाम के नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्सोन 25WG या फिफ्रोनिल 5% SC या फिर इमिडाक्लोपिड 17.8 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इनका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते। जैसा कि आपने बात करी हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में अपने पास लौकी है, तोरई है, टमाटर है, भिंडी है, खीरा है, इस समय मिर्च भी है गर्मियों के समय, अगर इसमें आपको कोई कीट की समस्या आ रही है तो सबसे पहले मैं ये किसानों को सुझाव दूंगा कि इसमें नीम आधारित या नीम ऑयल का उपयोग करें, क्योंकि ये रेगुलर टूटने वाली सब्जियां हैं जिनको आदमी उपयोग कर रहा है, तो इसमें आप नीम का अगर उपयोग करेंगे, नीम ऑयल का 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो आपके लिए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि नीम जो है ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं रहता और कीट इसको, क्योंकि इसमें कड़वाहट रहती है उस वजह से जो है इसमें ज्यादा रस चूसते नहीं है ना ही इसको नुकसान पहुंचाते।
1: नीम के बारे में तो वो लोकोक्ति जिंदगी से चली आ रही है, नीम लगे यदि घर के पास हर बीमारी का हो नाश, तो नीम का अगर हम कुछ सप्लीमेंट बनाते हैं और वो दवा के तौर पर हम फसल पर डालते हैं तो नेचुरली कीड़े को असर होगा लेकिन मनुष्य को तो असर नहीं होगा। तो आप कह रहे थे कि नीम का प्रयोग करना चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज हो सकती है जिसका हम प्रयोग करें? और अगर हम इसे हम इस मोड में ले जाएं कि हम प्राकृतिक किसी चीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल जैविक उत्पादन चल रहा है, प्राकृतिक उत्पादन की ओर सरकार भी प्रमोशन कर रहा है, जिला प्रशासन भी मेहनत कर रहा है कि प्राकृतिक सब्जियां मिले, तो प्राकृतिक किसी दवा का, चाहे वो घंजीवामृत हो या इस तरह के जो है, उनका भी उपयोग किया जा सकता है?
0: किसान क्या है, किसान को जागरूक बनाने के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई है जिसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, लगभग किसान समझ नहीं रहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती क्या है, लेकिन प्राकृतिक की अगर बात करें तो जो प्रकृति से हमें मिल रहा है, जो फल फूल पत्ती, उसी का उपयोग करें। जैसे अगर आप नीम की बात करें तो उसके लिए अपन क्या है, नीमास्त्र बना सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, बस किसानों को क्या है थोड़ा पहले समय जागरूक होना पड़ता है। क्या है, किसान को थोड़ा फसल खेत पे जाए, अपनी फसल देखे कीट रोग है कि नहीं है। लेकिन क्या है, किसान सिर्फ अपने उपयोग के लिए जाता है जब उसको फल तोड़ना होता है उसके लिए। अगर आप किसान चाहे तो क्या है, नीम अस्त्र का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है। अपने यहाँ नीम की पत्तियां बारह मास ही उपलब्ध रहती है, नहीं गर्मियों के समय उसकी निवोली या उसके फूल उपलब्ध रहते हैं। अगर आप फूल और फल उसकी निवोली का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप नीमास्त्र के लिए क्या है, सिर्फ एक गौमूत्र और 5 से 7 किलो जो है उसमें नीम की पत्तियां, जिसको अच्छे से खलबत्ते से कूट लें, खलबत्ता नहीं है तो मिक्सी से उसको ग्राइंड कर लें। अगर मिक्सी से भी ग्राइंड नहीं कर रहे तो आप सीधे गौमूत्र में जो है उसको 5 से 10 kg जो पत्तियां उसमें डाल दें, लगभग जो है 15 से 20 लीटर पानी या 15 से 20 लीटर गौमूत्र कह लें, और उसमें अच्छे से चूल्हे पे रख दें या गैस पे आप 3 से 4 उबाल आने दें। जब 3 से 4 उबाल उसमें आ जाएंगे और फिर उसको 24 घंटे के लिए ठंडा होने, उसके बाद आप उसका उपयोग करेंगे तो जितने भी प्रकार के हरे मच्छर, जैसेड, एफिड, सभी प्रकार के जो है उसमें इल्लियां पहले पैदा ही नहीं हो पाएंगी, तो वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरी बात, अगर आप बात करें तो अग्नियास्त्र की, अग्नियास्त्र का भी ऐसा ही उपयोग कर सकते हैं आप, कि जैसे आपके लहसुन है, हरी मिर्ची है, और उसमें भी ऐसे ही प्रोसेस यही रहेगी कि आप उसको गौमूत्र में 15 से 20 लीटर लें और उसको उसमें डाल दें कूट के, और अपनी जो देसी पत्ती वाली तम्बाकू जिसको लोग गांव में उपयोग भी करते हैं, अगर वो पत्ती वाली तम्बाकू आपको 250 से 300 ग्राम।
1: यहाँ पर हम एक चीज अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा, खाने के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो खाना गलत है, लेकिन उसको दवा के तौर पर एक रासायनिक दवा बनाने में जरूर शामिल किया जा सकता है। सर बात जारी रखें,
0: अगर आप जो है जो मार्केट में अवेलेबल रहती है पत्ती वाली तम्बाकू, याद रखें डंठल वाली नहीं, जो पत्ती वाली तम्बाकू आती है उसका अग्नियास्त्र में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, और वो बहुत ही कीटों को निष्क्रिय करने या उनको मारने के लिए बहुत उपयोगी है। इसको आप वही प्रोसेस सेम है कि आप 15 से 20 लीटर गौमूत्र ले लें, गौमूत्र नहीं है तो पानी ले लें, उसको बढ़िया आप 3-4 उबाल आने दें, उबाल आने के बाद आप 24 घंटे तक जो है उसको ठंडा होने दें। उसके बाद जो अपनी किसान भाई जो स्प्रे पंप है 15 लीटर या 16 लीटर उसमें 200 से 250 ml उसको डाल दें और उसका स्प्रे कर दें। एक किसानों से और अनुरोध करना चाहूंगा मैं सर, कि किसान भाई क्या करते हैं, दवाइयों का उपयोग तो ज्यादा करते हैं लेकिन दवाइयों के साथ पानी का उपयोग नहीं करते। एक बीघा में लगभग हम लोग जो कहते हैं कि 5 से 6 पंप का उपयोग करना चाहिए और किसान दवाई का उपयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, लेकिन किसान क्या है, यहाँ पे दवाई जो हमने 250 ml बताई वो दवाई वो 500 ml डाल देता है, लेकिन जहाँ पानी की बात करें या पंप की बात करें तो वो 2 से 3 पंप का ही स्प्रे करता है, 5 और 6 पंप का स्प्रे वो नहीं करता। तो अगर प्रकृति की बात करें तो ये सब चीजें अपने पास है, इनका अगर आप उपयोग कर लें तो मार्केट की रासायनिक इनकी दवाइयों के कीटनाशकों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपना स्वास्थ्य भी
1: पैसा भी बचेगा,
0: पैसा भी बचेगा, रासायनिक दवाएं महंगी भी आती हैं, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और अब क्या है किसान जागरूक भी होगा जी। क्या है मार्केट में जाता है वो चीजें लेता है तो उससे क्या है, एक तो उसका समय, ऊपर पैसा, हम तो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल है, घर की चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको मिर्ची भी आपकी घर की है, लहसुन भी आपका घर का है और नीम तो घर का है ही, सिर्फ क्या है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, इसको उबालना है और उसको ठंडा होना है और पर्याप्त मात्रा 2 से 2.5 ml या सीधा सीधा एक अपना पानी का गिलास का उपयोग कर लें, एक पानी के गिलास को उसमें भरें और अपनी टंकी में डाल दें
1: और बाकी पानी मिला दें,
0: बाकी उसमें पानी मिला दें और उसमें
1: पानी गर्म होना चाहिए ठंडा
0: नहीं, पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए नॉर्मल, जैसा अपन अन्य दवाइयों के लिए कीटनाशकों के लिए उपयोग करते
1: हैं, खुद पीते हैं हम ये मान लें,
0: या अपन जैसे अपन खुद पानी का उपयोग करते हैं वही नॉर्मल पानी होना चाहिए,
1: गर्म करने की जरूरत
0: कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप जो है उससे स्प्रे कर दें तो उससे किसी भी प्रकार का हरा मच्छर, काला मच्छर, इल्ली, एफिड, जैफिड कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उसमें फसल में उत्पन्न नहीं होंगे। दूसरी बात करें, जैसे आप अभी कह रहे थे कि भिंडी, भिंडी में क्या है सफेद मक्खी की समस्या रहती है, दूसरी क्या है जैसेड, ये क्या है भिंडी में क्या है ये छेद कर देते हैं, इस कारण से क्या है इसमें एसेफेट 75% SC 1.5 से 2 ml या इसमें एमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.3% पानी की दर से जो है आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं और इस कीट से आप निदान पा सकते हैं।
1: विजय प्रताप जी, आप हमारे श्रोताओं के बीच में आए और आपने फसलों में मौसम का पूर्वानुमान का अनुमान लगाते हुए कीट और रोग में किस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं, किस तरह से कीट और रोग को खत्म कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को बहुत अच्छा ले सकते हैं, क्वालिटी वाइज भी हम अच्छा ले सकते हैं, जो जो खास बातें आपने बताई, जो जो की पॉइंट्स आपने दिए, अब जिम्मेदारी हमारे किसान की है, हमारे कृषक की है कि वो उनको कितना प्रैक्टिकली यूज करता है, क्योंकि जैसे आपने एक बिंदु पर आपने खास तौर पर जोर दिया कि वो दवा तो ज्यादा डाल सकता है लेकिन मेहनत कम करता है, यानी कि पंप की संख्या कम कर देता है, तो जितने पंप जिस फसल में जितने बीघा में होने चाहिए मानक, अगर एक बीघा में 5 से 6 पंप का मानक है तो वही करें। आप हमारे श्रोताओं के मध्य आए, जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: भैया देखो, अभी अपन ने भेंट वार्ता सुनी। देखो विषय है तो फसलों में मौसम पूर्वानुमान द्वारा कीट रोग नियंत्रण। वार्ताकार थे श्री विजय प्रताप सिंह और इनसे बता रहे थे अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। भैया हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भैया ने जो जानकारी हमने दी वह सुनी हुई है और इनसे भी लाभ जरूर लेंगे और वापे अमल जरूर करेंगे। और भैया जी जो भेंट वार्ता हती वह पुनः प्रसारित थी। भैया अब हम चाह रहे हैं कि अपने भैया को एक अच्छो सो लोकगीत और सुनवा दें। तो सुनत हैं जो लोकगीत जय गाँव है बनवारी लाल।

0: surgió Me.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम सोमनाथ, अमृत पर्व, भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव विषय पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश मोरी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार
1: सतीश जी। जैसा कि हम जानते हैं, आज सोमनाथ अमृत पर्व का अवसर था और प्रधानमंत्री ने इस पर्व में भाग लिया, जलाभिषेक किया और उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक संबोधन भी दिया इस अवसर के महत्व को लेकर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सो सतीश जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इंगित किया कि ये प्राचीन मंदिर है और ये पहले भी बहुत चुनौतियों से गुजर चुका है, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमें इसके इतिहास के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका अभी तक इतने गौरवपूर्ण रूप में खड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।
2: ये देखा जाए तो सोमनाथ पे बार बार हमला हुआ था पहले, ये 1000 साल पहले भी बार बार हमला हुआ और सोमनाथ टेम्पल को धराशय किया गया। बाद में ये भारत की आजादी के टाइम से ये सोमनाथ टेम्पल को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई ने एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी ने उसका शिलान्यास किया और ये शिलान्यास करते करते मंदिर का बांधकाम आगे बढ़ा। 1994-95 में हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने नृत्य मंडप का भी लोकार्पण किया और उसके पे कलश लगाने की जो बात थी उसको कलश लगाया और ऐसे पवित्र जो लोग थे उन्होंने उसमें साथ देके ये सोमनाथ मंदिर का अभी तक में निर्माण पूरा कर दिया है। और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को एक राष्ट्र लेवल पे सब एक जुट रहे लोग उसके लिए का एक सेंटर बनाना चाहते हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है ऐसा दिखाना चाहते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट पे जब हमला होता था तब हमीर जी गोहिल की भी शहादत हुई थी, बाद में आजादी के बाद अहल्याबाई होलकर और गायकवाड़ जी सबने अपना योगदान देके मंदिर बनाने में सहयोग दिया। उसके बाद अभी जो जामनगर के राजवी है जाम साहब, उसके जो वंशज है वो भी उनके प्रमुख रहे हैं और उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारे कन्हैयालाल मुंशी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या जाम साहब हो या गायकवाड़ हो, उन सब ने अपना योगदान देके ये मंदिर को अभी तक का जो स्वरूप बना है वो भव्य स्वरूप बनाने में अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। अभी तो ये अथॉरिटी भी एक बना दी है मंदिर के लिए कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो जो लीगल है उसको भी सोमनाथ ट्रस्ट में लेके उसका डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि एक धार्मिक स्थान के साथ साथ प्रवास के लिए भी एक स्थान बने, उसके लिए भी वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने कोशिश की है। 3 साल पहले भी सोमनाथ तमिल संगम करके तमिल से लोग आए थे और 5000 से ज्यादा लोग तमिल से आए थे और सोमनाथ तमिल संगम करके एक उत्सव किया था
1: जी।
2: ऐसे हर साल में कोई ना कोई अलग अलग उत्सव होता रहता है और लोग ज्यादा से ज्यादा सोमनाथ मंदिर के प्रति जुड़ते जा रहे हैं और उसमें शाम के टाइम पे लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, तो ये सब चीज प्रवासी लोग आके देखते हैं। अभी उसमें एक और जोड़ दिया है कि सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, मीन्स ये शो भी होगा, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उसके लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं।
1: आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रेरणात्मक धर्म स्थल होते हैं, जैसे अभी स्वाभिमान पर्व भी हुआ था, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्योंकि 1000 साल हुए थे जो पहला रिकॉर्डेड अटैक है महमूद गजनी का इस स्थल पर उसको, तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि कई बार इसका विध्वंस हुआ, लेकिन सबने मिलकर, श्रद्धालुओं ने, राजाओं ने आगे आकर उसका पुनर्निर्माण किया और ये साइकिल कई बार रिपीट हुई। सो आपको लगता है कि बार बार विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भारतीयों की सामूहिक चेतना से कभी भी लोप नहीं हुआ, ये जो एक कॉन्शियसनेस है ये हमेशा रही, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जो देश है उसकी एकता के लिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती है,
2: देश के कोने कोने से लोग आ पाए, अलग अलग वहीं पे जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा जा रही है, और वहीं एक पूरा जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है इस टाइप का एक सीशोर पे भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मंदिर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहीं नेचर के साथ भी डेवलपमेंट हो रहा है, और लोग जो सोमनाथ आते हैं नजदीक में जो लायन सेंचुरी है उसका भी विजिट करते हैं, कई लोग सोमनाथ के साथ द्वारका का भी दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि जितना सोमनाथ पुराना है ऐसे द्वारका नगरी भी पुरानी मीन्स हमारी विरासत है भारतीयों की, तो उसके साथ जुड़ते हैं और लोग धार्मिकता के साथ प्रवास का भी आनंद लेते हैं और बहुत से लोग जुड़ते हैं इसमें। अभी जो ये लाइट साउंड हो रहा है या ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं, इससे यूथ भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें अपने आप का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि सोमनाथ मंदिर की आरती उनकी वेबसाइट पे डेली लाइव होती है, वो भी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब से ये सोमनाथ मंदिर की आरती लाइव लोग घर पे देख पाए, इसलिए भी इंतजाम उन्होंने किया है, तो विदेश में बैठे लोग भी सोमनाथ का दर्शन कर पाए, ये भी प्रधानमंत्री का विजन था तो ये भी किया हुआ है।
1: जी बिल्कुल, इनफैक्ट जो ये सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो आध्यात्मिक एकता है उसका कितना बड़ा प्रतीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है, मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है, मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है, मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विनाश में सृजन कैसे होता है, असत्य में सत्य की जीत कैसे होती है, बहुत सारी प्रेरणात्मक यहाँ से हमें सीख मिलती है। आपको लगता है ऐसा पर्व जब होता है, स्वाभिमान पर्व या सोमनाथ अमृत पर्व, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, आपको लगता है कि देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, गौरव उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें?
2: डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये लोग कुछ लोग आध्यात्मिक हिसाब से वहीं विजिट करते हैं, कुछ लोग एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से विजिट करते हैं, कुछ लोग ये सी शोर है इसलिए भी आना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग एंगल से लोग आते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। अलग अलग पर्व हो रहा है, अलग अलग उत्सव हो रहा है, जब महाशिवरात्रि होती है तब भी सोमनाथ का बहुत महत्व है, और उसका जो शिवरात्रि की रात्रि के टाइम पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, वहीं लाखों की मेदनी इकट्ठी होती है और सोमनाथ में अपना पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसा साल में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग उत्सव के टाइम पे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं और आते रहते हैं।
1: तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रगति के भी स्रोत होते हैं जब ऐसे तीर्थ स्थलों को, धर्म स्थलों को डेवलप किया जाता है। और जो आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, 97 लाख श्रद्धालुओं से अधिक हर वर्ष यहाँ आते हैं, और जिस तरह की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डेवलप की गई है जिसमें वंदे भारत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है, ये आपको लगता है ये पूरे आर्थिक विकास के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है?
2: वो सही बात है, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं तो इसके हिसाब से जो आनुषंगिक जो व्यवसाय है सब टूरिस्ट के बेस पे, तो आनुषंगिक व्यवसाय भी बढ़ता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और वहीं की जो लोकल कम्युनिटी है उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये सब हिसाब से टूरिस्ट प्लेस बहुत मायने रखता है। और पहले सोमनाथ आज से 10-15-20-25 साल पहले देखो तो सिर्फ दर्शन का स्टेशन था, पहले ऐसा ही मानते थे कि दर्शन के लिए जाना है। अभी वहीं अलग अलग एक्टिविटी इतनी शुरू हो गई है कि लोग दर्शन के अलावा भी अपना आनंद प्रमोद के लिए जा सकते हैं और वहीं रुकते हैं। पहले 2-4 होटल थी, अभी तो इतनी होटल भी हो गई है, इतनी धर्मशालाएं हो गई है, अलग अलग ट्रस्ट के भी बिल्डिंग बन गए है, तो लोग आके रहते, अच्छी फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा जा रही है। जैसे आपने बोला वंदे भारत, सोमनाथ में पहले मीटर गेज रेलवे लाइन थी, वो अभी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो गई है, तो इसके हिसाब से ज्यादा ट्रेन की भी कनेक्टिविटी हो गई है, और पास में ही केशोद एयरपोर्ट है, दीव का एयरपोर्ट है, उसकी भी फैसिलिटी मिल रही है। तो इस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा इजिली वहीं अप्रोच करके जा सकते हैं।
1: जी, और एक और चीज जो आज प्रधानमंत्री ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया, वो उन्होंने कहा कि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की जो परमाणु शक्ति है उसको दर्शाने के दृष्टिकोण से भी। आइए सुनते हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, जो शक्ति के प्रतीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती, जिसका एक सिंबल सोमनाथ टेम्पल भी है, और जो उनका एक हमेशा से वर्तमान सरकार का एक मूल मंत्र रहा है, विरासत भी विकास भी। आपको लगता है ये भी बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है? एक तरफ हम विरासत को पूरा उसका संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं जैसा ये महोत्सव इंगित कर रहा है, दूसरी तरफ विकास वो चाहे एकदम एडवांस्ड फील्ड हो, एटॉमिक पावर में हो, शक्ति हमारी जो है वो किसी भी और देश से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है, तो इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं?
2: देखो, सोमनाथ को शक्ति केंद्र भी बोला जाता है
1: जी।
2: वहीं लोग आते हैं, वो अपना मन की शांति लेते हैं, आध्यात्मिक विचारों की उन्नति होती है, और लोग जहाँ शक्ति केंद्र में आते हैं वहीं से एक अलग चेतना लेके जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं आगे जाके और तरक्की करूंगा, इधर मैंने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया है तो एक अपने आस्था का भी केंद्र है। इस हिसाब से देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, और जितने भी धार्मिक स्थल है उसमें सोमनाथ का महत्व अलग ही है। वो भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसलिए भी लोग 12 ज्योतिर्लिंग को जाते हैं तो पहले सोमनाथ आते हैं और दर्शन करते हैं, तो इस रूप से भी बहुत महत्व सोमनाथ का बनता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बारीकी से बताया कि क्या महत्व है जो सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है उसका पूरे देश के लिए, हमारे आध्यात्मिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: सुर्खियों में।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया का गाना, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम ने, बोल हैं देव कोहली के और संगीत राम लक्ष्मण का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म ताल से, अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम और ए.आर. रहमान की आवाज़ है। बोल है आनंद बख्शी के और तर्ज बनाई है ए.आर. रहमान ने।

आइए अब सुनते हैं निकाह फिल्म से ली गई एक कव्वाली। आवाजें हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सलमा आगा और साथियों की। इस का संगीत दिया है रवि ने और बोल हैं हसन कमाल के। आइए सुनते हैं निकाह फिल्म की ये कव्वाली।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक दूजे के लिए फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसे गाया है एसपी बाल सुब्रमण्यम ने। लता मंगेशकर की आवाज़ है साथ में, और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का प्रतिमान।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
4: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
3: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
4: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
3: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
4: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत

0: का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय

0: ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता N. रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब

0: अब आगे बढ़ चुका है।
1: हुकूमत ने आज मुत्तला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है और भारत के पास 60 दिन का खाम तेल, 60 दिन की कुदरती गैस और 45 दिन के लिए एलपीजी का जखीरा मौजूद है। ये बात नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया के मुतालिक वुजरा के गैर रस्मी ग्रुप की 5वीं मीटिंग के दौरान बताई गई। मीटिंग के दौरान इस बात की भी इत्तला दी गई कि जर मुबादला के जखायर 703 अरब अमरीकी डॉलर की खातिरखा मकदार में मौजूद है। हुकूमत ने बताया कि सप्लाई का इंतजाम बहुत अच्छा रहा है और लोगों को ईंधन और दीगर मसनूआत की खरीदारी के लिए परेशान होने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मीटिंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसरान को हिदायत दी कि जमीनी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर अमल आवरी के लिए ठोस इकदाम करें। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा था कि वो मेट्रो और आवामी आमदोरफ्त का इस्तेमाल करके और कार पुलिंग का तरीका इख्तियार करके पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करें। उन्होंने शहरियों से यह भी जोर देकर कहा था कि वो एक साल के लिए गैर जरूरी बैरून मुल्क सफर से इज्तनाब करके और मुल्क में ही सियाहत और तकरीबात मनाकर और गैर जरूरी सोने की खरीद से परहेज करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर को महफूज रखने में तआवुन दें। वजीर आजम ने किसानों से जोर देकर कहा था कि वो कीमियावी खादों के इस्तेमाल में 50% तक कमी करें और कुदरती काश्तकारी के तरीक़ेकार को अपनाएं, जमीन के रखरखाव में मदद करें, दरामदात पर इन्हिसार में कमी करें और काश्तकारी के लिए डीजल पंप के बजाय शमसी तवानाई से चलने वाले आपाशी के पंप को वसी पैमाने पर इख्तियार करने की हौसला अफजाई करें। हुकूमत ने कहा कि मुल्क को इसके लिए एक बड़ी लागत का खर्च उठाना पड़ रहा है क्योंकि बैनुल अक्वामी खाम तेल की कीमतें लगातार बहुत ऊंची सतह पर हैं और ईंधन की बचत इस बोझ में कमी कर सकती है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: इस मीटिंग में मरकजी वुजरा JP नड्डा, अश्वनी वैष्णो, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये आकाशवाणी है। मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आयोजिका मिशन देही कानून 2025 VBG रामजी के निफाज को नोटिफाई कर दिया है। ये कानून इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि यह कानून हर माली साल के दौरान 125 दिनों की रोजगार उजरत की गारंटी देते हुए देही भारत को बाइख्तियार बनाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क भर में मौजूदा माली साल के लिए नए फ्रेमवर्क को फ़ाल करने की खातिर 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून का मकसद माली साल के दौरान स्टेचुरी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस इजाफी रोजगार गारंटी के जरिए देही तरक्यात की रफ्तार में तेजी, आमदनी के तहफ़ की बेहतर जमानत और देही कुंभों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये कानून उजरत की अदायगियों को बर वक्त बनाने, शफाफ और जवाबदेह अदायगियों पर जोर देता है। साथ ही VBG रामजी कानून में मुकर्र वक्त में काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर की कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ साथ हम आहंग करता है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
3: आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारी हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुत्तला किया कि हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और BJP सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई मरकजी वुजरा और BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आसाम में NDA की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। मगरबी बंगाल की नई रियासती हुकूमत ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीनी इजलास की सदारत की और अमनो कानून की सूरत हाल से मुतालिक रियासती सेक्रेटरीट नबन्ना में इंतजामी मीटिंगें की।

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331-0481-2371-7116 और 2331-44444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक बस, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जो चलता है उसमें हीट जनरेट होती है। चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएंगे, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो इस उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है। आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी
0: अप्रैल मई के महीने में
2: जी आग लगी, और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
0: जी।
2: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है
0: जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
0: जी।
3: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
0: जी,
3: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है?
0: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
1: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहां पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो

0: बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें अब एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
1: जी राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत।
2: नमस्कार जी निगम जी को और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी राकेश
3: जी। राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यू एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसमें सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पर देना है, ना कि सबके 60 एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
3: देखिए ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री कभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी कभी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
0: हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंट

0: कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रख रखाव, आग के लिए बचाव का रख रखाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रख रखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, MCBs आते हैं, RCBs आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है AC में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है। और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए। और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, DFS, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है।
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी।
0: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है। कहीं AC में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है MCD की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: उस धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
2: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं प्रशांत।
2: नहीं लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप 3 सवाल पूछे जी।
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद
3: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में 1 हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15 मिनट 16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
3: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया
1: जी।
3: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोग के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिकसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है और बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
1: जी।
3: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो प्रिकॉशन लें, हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस इंस्पेक्शन करेगी।
1: जिस चीजें फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
4: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार।
4: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार सवाल।
4: हाँ सर नमस्कार जी।
0: नमस्कार
4: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील सीहोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
0: नमस्कार विजय।
4: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
0: हाँ विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप। तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी, फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहाँ पे आप इमिडिएटली फोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
0: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे और

0: जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं श्रीपाद जाखड़ बोल रहा हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कभी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब ये मेरा प्रश्न।
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
0: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज़ है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहाँ पे जो जलने की चीज़ें जितनी ज़्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से, गलती से, और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
4: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं। तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेडर, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है,

0: आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया जाए?
0: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: आरडब्ल्यूजे हो या कुछ भी,
2: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है, पानीपत से हैं ये शैलेंद्र शेंदुर कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सके? सीएनजी की भी हम बात करें तो सीएनजी वाहनों में बहुत आग लग रही है।
2: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है। जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
3: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
0: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी एलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात कही, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी मैं प्रशांत जी रोकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, फिलहाल नमस्कार।
2: नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं परदेस फिल्म का गीत, कुमार सानू की आवाज में आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत नदीम श्रवण का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, और इसी गीत को पसंद किया है झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद ने। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, सिंगारपुर से सालिक पुजारी और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया, हमारे ये सभी श्रोता सुनने की ख्वाहिशमंद हैं। संगीत फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है आनंद मिलन ने।

साजन, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत एसपी बाल सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के बोल हैं और संगीत नदीम श्रवण का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं महाराष्ट्र से अभिजीत कहानकर राही, श्रीमती सरिता कहानकर, प्रिंस एकांश कहानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत कहानकर, प्रणीता कहानकर, आकर हाइस बहादुर नागपुर से वैशाली शालेश कहानकर, श्वेता सुमित कहानकर, कुमारी ध्वनि कहानकर, परी और टुक टुक। और इसी गीत को पसंद

क्या है? कवर कॉलोनी बड़वासी, प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवाजी शिमाली और मीनू राज शिमाली ने। आइए सुने हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारे हाथ में है अगला पत्र। बछेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी, कृत वर्मा। और एक और खत है हमारे हाथ में, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। हमारे ये श्रोता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चांदनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार शिव हरी।

लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं शक्ति फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत आरडी बर्मन का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं पटेल नगर पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजारिया, गीता रानी जाजारिया, गगनदीप जाजारिया, बेबी आरजू जाजारिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर मीक, जितेक बिरक और मीता बिरक।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद वादन, राग है कामोद।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोद वादन, राग था कामोद। तबले पर संगत की थी यदुनंदन गोस्वामी ने। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

साथ देने का वादा करो। समस्याएं हैं तो कहीं समाधान भी होगा, समस्याएं हैं तो कहीं समाधान भी होगा, दुखों का पहाड़ है तो कहीं सुकून का आसमान भी होगा। ता उम्र कोई परेशान नहीं रहता यहाँ पर, ता उम्र कोई परेशान नहीं रहता यहाँ पर, सही समय आने पर हर समस्या का निदान भी होगा। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ। 4:59 हो चुके हैं, ठीक 5 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूं,

0: कहूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। साथ ही स्थायी शांति बहाल होने की संभावना भी धूमिल हो गई है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया और ये $105 प्रति बैरल से भी अधिक हो गई। सऊदी अरब ने भी कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध से तेल की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। उसने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुलने के बाद भी तेल की वैश्विक कीमतें 2027 तक स्थिर नहीं होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। पर हम लोग यहाँ पर जिंदगी काटने नहीं, जिंदगी जीने आए हैं। 5:16 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किशोर कुमार जी की आवाज में ये दिल ना होता बेचारा। सम्मान और अदब के साथ कीजिए बात हर किसी से, सम्मान और अदब के साथ कीजिए बात हर किसी से, क्योंकि सम्मान सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी चाहिए। 5:21 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित।